खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं। ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो

एक बात पानी से सीखी जा सकती है, छोटी छोटी नदियां शोर मचाती हैं, परंतु महासागर शांत रहता है। ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: से शुक्र करूं तेरी रहमतों का ऐ खुदा, मुझे मांगने का सलीका नहीं है पर तू देने की हर अदा जानता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा।
1: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: सुंदर स्त्री हीरा है, लेकिन नेक स्त्री हीरों का खजाना है, ये कहना है सादी का। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन और प्रोग्राम है शारदा सवेरा।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवत गीता हमें स्वास्थ्य के बारे में भी एक बहुत सुंदर बात बताती है। स्वस्थ शब्द का अर्थ क्या है? स्व में स्थित होना। इसीलिए अगर स्वास्थ्य सही से समझना है तो स्व की परिभाषा को समझना आवश्यक है। भगवत गीता हमें बताती है कि जो हमारा शरीर है ये एक समय बाद समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये शरीर हम नहीं है, ये केवल एक गाड़ी है और इसके ड्राइवर हम हैं, जो कि आत्मा है। अर्थात कि हम स्व से समझ सकते हैं कि स्व हम आत्मा के प्रकार हैं। सो भगवत गीता हमें बताती है स्वास्थ्य की सही परिभाषा। स्वास्थ्य अर्थात स्व में स्थित होना। स्व में स्थित होने के लिए हमें स्व को जानना बहुत आवश्यक है। स्व अर्थात मैं। अब ये मैं क्या है? अगर मैं को शरीर माने तो एक दिन ये शरीर समाप्त हो जाएगा। मैं को मन बुद्धि माने तब भी जीवन के समाप्त होने पे ये समाप्त हो जाएंगे। परंतु अगर इस स्व को हम आत्मा माने, जो कि कभी जिसका नाश नहीं होता, ऐसी आत्मा सही में स्व है। तो स्व में स्थित होने का अर्थ है कि हम आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करें। अर्थात कि अपने को जीवन के कर्तव्यों के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक चेतना पर भी कार्य करें। इससे हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, तनाव से मुक्त रहेंगे। हरे कृष्णा।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
3: खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। जी हाँ, इस शेर का अर्थ ये है, या यूं कहें कि इन खूबसूरत लाइनों का मतलब ये है कि जहां एक सम्मान है, आत्म सम्मान की बात है, खुद की पहचान की बात है और समाज में एक अलग जगह बनाने की पहचान है। ये खूबसूरत लाइनें यही कहती हैं। राम राम, दो सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ, जहां ज्ञान विज्ञान की बातें होती हैं, पढ़ने पढ़ाने की बातें होती हैं, जिंदगी को जीने की बातें होती हैं आपके अपने रेडियो स्टेशन पर। वैसे प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक हम यहां से ऑन एयर होते हैं। आज एक खास शख्सियत हमारे साथ जुड़ रही है। कहते हैं कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, जिसे हम बात करना चाहते हैं, जिसके बारे में आसपास हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास क्या खास हो रहा है। पत्रकारिता क्षेत्र के ऐसी दिग्गज आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनका तारुफ आपको कराना चाहूंगा। हमारे साथ हैं अजय सिंह जी, जो कि सीनियर कम्युनिकेशंस प्रोफेशनल हैं। बहुत अच्छे एक अनुभव के साथ आप आते हैं और जितना अनुभव सर का है, तो उस अनुभव को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि इसके बारे में, यानी कि इन बातों के बारे में बात होना बहुत जरूरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, द टेलीग्राफ, द पायनियर, बिजनेस स्टैंडर्ड, स्टार न्यूज, समय, बहुत जगह सर ने काम किया, तो बहुत बड़ा अनुभव हमारे साथ आज वो शेयर करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ जब मैं आगे बढ़ रहा था तो मुझे ये भी समझ में आया कि भारत के राष्ट्रपति के प्रेस सचिव आप रहे हैं और आपने जो सेवाएं दी हैं वर्ष अक्टूबर 2019 से लेकर 2025 तक, यानी कि सितंबर 2025 तक अपनी सेवाएं दी हैं। तो इस अनुभव के साथ आज की हमारी शख्सियत हमारे बीच है। तो सर, सुनो शारदा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल।
4: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: माफ कीजिएगा सर अगर मैं कहीं कुछ तारुफ में कुछ कम बात रख पाया, क्योंकि बहुत बहुत बहुत बड़े अनुभव के साथ आप आते, लेकिन जितना समय मिला मैं आपके बारे में कह पाया।
4: नहीं, तारुफ आपने थोड़ा ज्यादा ही कर दिया।
3: ये तो जरा नवाजी, प्यार है सर आपका। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप कैसे हैं, कैसा लग रहा है शारदा यूनिवर्सिटी के इस आंगन में, प्रीमिसेस में आकर?
4: नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको सच बताऊं तो मुझे अंदाज नहीं था कि कैंपस इतना बड़ा है और इतना वाइब्रेंट है। तो जब मैं पहले आया तभी मुझे लगा कि अच्छा है कि प्राइवेट सेक्टर शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का काम कर रहा है, तो देख के अच्छा लगा।
3: वेरी गुड सर, थैंक यू सर। थोड़ा मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहूंगा, अगर आप मुझे, मेरे लिसनर्स को बताएं, मेरे स्टूडेंट्स को बताएं, क्योंकि शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट का एक स्कूल है जहां स्टूडेंट्स आते हैं, दूर दराज से स्टूडेंट्स आते हैं। जब ऐसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ती है तो वो उनके बारे में जानना समझना चाहते हैं कि ये जो सफर आपका रहा है, कैसा सफर रहा, सुहाना सफर रहा या अड़चने भी बहुत ज्यादा आई, और उन अड़चनों को पार करते हुए आप आज समाज में एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे?
4: नहीं, जिंदगी जैसे चलती है वैसे ही चली, और मैं, मुझे याद है कि मैं 1984 के आसपास मैं बैंक में था, और बैंक में मैं थोड़े दिन आगरा में काम किया, और उसके बाद मैं टाइम्स ऑफ इंडिया चला आया। टाइम्स ऑफ इंडिया में ट्रेनी स्कीम होती थी, और ये बात है 85 की
3: जी,
4: और वहाँ से फिर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में रहा। 91 में मैं चला गया था बिहार इकोनॉमिक टाइम्स में
3: जी,
4: फिर उसके बाद मैं लखनऊ फिर आ गया आनंद बाजार के साथ
3: जी,
4: और फिर मैं 95 के आसपास दिल्ली आ गया था, और तब से मैं दिल्ली में हूँ। तो उसमें हमने पायनियर, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, ईटीवी, स्टार न्यूज, और न्यूज एक्स, फिर उसके बाद फर्स्ट पोस्ट और गवर्नेंस नाउ जो फोर्टनाइटली थी
3: जी।
4: तो इस तरह के मैगजीन और डिजिटल जो नए नए उस समय आए थे, हमारे ख्याल से फर्स्ट पोस्ट पहला डिजिटल इफेक्टिव एक आउटलेट था
3: जी।
4: तो उसमें काम करता रहा, और फिर अचानक 2019 में मैं भारत के राष्ट्रपति का
3: मैं प्रेस सचिव। इसके बारे में जरूर जानूंगा, क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन का खजाना है, और मैं नहीं चाहता कि कम समय में ये बातें हो जाएं। मैं जरूर सबसे पहले ये समझना चाहूंगा कि जो आपने मुझे बताया कि बैंक सेक्टर में आप काम कर रहे थे, ये सवाल आता है, और जिस तरीके से आपने अपनी लाइन चेंज की, क्या उस वक्त पत्रकारिता की डिग्री आपके पास थी, या आपने फिर वो पढ़ाई की, या अनुभव के साथ आप धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए, इसके बारे में बातें होंगी जरूर। लेकिन सर, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा, यानी कि मैं म्यूजिक की बात करना चाहूंगा। आपकी मुस्कान वाकई बहुत अच्छी है, और मैं इसे समझ पा रहा हूँ कि आप खुश रहते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, तो बहुत सारे सवाल मैं आपसे जरूर करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं म्यूजिक की बात आपसे करता हूँ कि जब स्ट्रेस आपके आसपास होता है या ज्यादा आप खुश होते हैं, तो कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं या सुनाना चाहते हैं मेरे लिसनर्स को?
4: कोई स्पेसिफिक गाना तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे गाने हैं जो कि, और ओल्ड सॉन्ग्स हैं,
3: ओल्ड सॉन्ग्स,
4: क्योंकि थोड़ा सा उसमें एक एटर्नल वैल्यू रहती थी। तो अगर आप कोई भी सॉन्ग ले लें, कैफी साहब का या आप शैलेंद्र का, तो वो सॉन्ग्स ऐसे थे जो कि सुनने में अच्छा लगता था।
3: चलिए, बॉबी फिल्म का शैलेंद्र साहब की रचना से सजा हुआ गाना मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ। सो दोस्तों, आप कहीं जाएगा बस सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरू शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। और मेरे साथ आज एक शख्सियत जुड़ रही है, आप है अजय सिंह सर जी, जो कि मीडिया इंडस्ट्री के बहुत बड़ी शख्सियत हमारे साथ हैं, बहुत बड़े अनुभव के साथ आते हैं, यानी कि 4 दशकों के अनुभव के साथ आते हैं। तो इस ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनते हैं, और जो सवाल मैंने सर के साथ किया है उसका आंसर जानेंगे जरूर एक छोटे से अंतराल के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुरशादा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। सामुदायिक रेडियो स्टेशन का मैं जिक्र बार बार कर रहा हूं क्योंकि शारदा विश्वविद्यालय का SSMFE यानी शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट का ये एक सामुदायिक यानी कि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है जहां सीखने सिखाने की बातें होती हैं, जिंदगी को जीने की बातें होती हैं। जब आप यहां आते हैं तो बहुत कुछ आप हासिल कर सकते हैं, यानी कि सीखेंगे तो सही लेकिन जब अनुभवी गुणी लोग आपसे जुड़ते हैं तो उनके साक्षात्कार को सुन के या उनके नजदीक बैठकर बहुत कुछ आप हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। हम बात कर रहे हैं मीडिया क्षेत्र के बारे में। कहा जाता है कि लोकतंत्र के चार स्तंभ जिसमें नाम आता है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। मीडिया की ही बात हो रही है तो हमारे साथ हैं अजय सिंह जी जो कि मीडिया इंडस्ट्री से आप आते हैं, 4 दशकों का अनुभव, बहुत बड़ा अनुभव अलग अलग चैनल के साथ। तो सर एक बार फिर से ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सवाल मैंने आपसे किया था, सवाल मेरा ये था क्योंकि आपने मुझे बताया था कि आप बैंक सेक्टर में काम कर रहे थे। मैं ही क्या सर, किसी के भी जहन में ये सवाल आएगा कि बैंक सेक्टर से निकलने के बाद आपने मीडिया इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। क्या उस वक्त पत्रकारिता क्षेत्र में आपने कोई पढ़ाई कर रहे थे या डिग्री हासिल थी या एक जुनून था, नहीं मुझे मीडिया करना है, तो इसके बारे में प्लीज बताइए।
1: नहीं, मेरे फैमिली में था, पत्रकारिता का एक कल्चर भी था,
0: खून में था ये
1: जी। तो एक तो वो था और दूसरा मैंने MCOM किया था PHU से
0: जी।
1: तो वहां से एक ये जो नेचुरल वो होता है उसमें हम बैंक में गए और बैंक में हम, लेकिन बैंक में हम, हमारा कोई मन नहीं लगा। हम तीन महीने रहे होंगे मुश्किल से।
0: सरकारी जॉब थी उस वक्त?
1: सरकारी जॉब थी। हाँ,
0: क्या बात है।
1: तो वो छोड़ के फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में उस समय एक ट्रेनी स्कीम आता था।
0: अच्छा।
1: तो मैं वहाँ चला गया और उससे हमने कानपुर में शुरू में हमारी पोस्टिंग हुई। करीब 7-8 महीने मैं वहाँ रहा कानपुर। उसके बाद मैं फिर लखनऊ आ गया। तो जब लखनऊ आया तो मैं वहाँ रहा टाइम्स ऑफ इंडिया में। और पत्रकारिता में मैं हमेशा रिपोर्टिंग साइड में रहा
0: जी, ऑन ग्राउंड रहे
1: और हार्डकोर रिपोर्टिंग साइड में रहा। तो हार्डकोर रिपोर्टिंग साइड में रहने से ये हुआ कि हमें घूमने को बहुत मिलता था या चीजें, हाँ चीजें जो जमीन पे हो रही हैं उसको जानने का मौका मिलता था। तो वो मैंने किया 91 में मैं बिहार चला गया और बिहार में मांग के गया। मैं इकोनॉमिक टाइम्स में उस समय गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया का ही वो पार्ट है लेकिन अपॉइंटमेंट अलग लेटर होता है उसका
0: जी।
1: तो मैं 91-93 इकोनॉमिक टाइम्स में रहा बिहार में और फिर उसके बाद आनंद बाजार ग्रुप के साथ आ गए,
0: बड़े-बड़े चैनल्स के साथ आपने,
1: टेलीग्राफ के साथ आए, फिर लखनऊ में आए।
0: लखनऊ,
1: हाँ, तो लखनऊ से फिर मैं दिल्ली आ गया।
0: ओके सर, आपने जिक्र किया कि जो मैं समझता हूँ कि जो एक टर्निंग पॉइंट रहा आपका, बैंक सेक्टर से निकलकर आपने मीडिया इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और आप बहुत बड़ी बात हमारे श्रोताओं को बता रहे हैं कि उस समय ट्रेनिंग का एक पार्ट आपने एक आर्टिकल देखा, पढ़ा, अप्लाई किया। तो ये जो प्रोसेस आज के समय में जैसे निकलती हैं वैकेंसी कि आपको हम ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग की हमें एक आवश्यकता है, तो उस समय भी ये हुआ करता था लेकिन शायद जागरूकता की कमी होगी या जिनके पास अवेयरनेस थी तो वो ज्वाइन कर गए आपकी तरह। तो क्या कहना चाहेंगे आपको अगर हम बात करें कि ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट के बारे में?
1: देखिए, पत्रकारिता में वैसे तो सच बताएं तो जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि आप जब फील्ड में जाते हैं और फील्ड में जो देखते हैं और फिर आप लिखते हैं,
0: क्या बात,
1: और जब डेस्क पे वो एडिट होता है तब आप ज्यादा चीजें जानते हैं। लेकिन 85 वगैरह में कोई इस तरह के इंस्टीट्यूट भी नहीं थे और कोई फॉर्मल एक एजुकेशन पत्रकारिता की, एक दो इंस्टीट्यूट थे जो कि उसको लेके चलते थे, पर टाइम्स ऑफ इंडिया का था।
0: अच्छा,
1: टाइम्स ऑफ इंडिया के पास था। हाँ, ट्रेनी स्कीम जिसमें आपके बहुत लोग आए, MJ अकबर वगैरह सब लोग उसी में आए, SP सिंह जो पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता के, उदयन शर्मा, इस तरह के बहुत लोग आए थे जो कि उसी से आए थे। लेकिन हमारा वो नहीं था, वो ट्रेनी जो था वो उनका दिल्ली का था
0: जी,
1: बॉम्बे और दिल्ली का था,
0: लखनऊ में नहीं,
1: हमारा लखनऊ में था
0: जी।
1: तो लखनऊ में ऑन जॉब ट्रेनिंग वो देते थे और उसमें 6 महीने की इंटर्नशिप होती थी, फिर आपको स्टाफ में रखा जाता था, फिर उसके बाद, और सीनियर्स होते थे जो गाइड करते थे।
0: बहुत बहुत बड़ी बात, बहुत सच्ची और अच्छी बात आपने कही है कि गाइड करते थे, मार्गदर्शन आपको मिला। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें सर, हम ये महसूस करते हैं कि मुझे अगर मेरे साथ ज्यादती हुई है तो मैं वही आने वाले ट्रेनी के साथ करूंगा, और अक्सर हमने ऐसा देखा भी है। लेकिन जब आप उस दौर से निकल कर आ रहे थे या आए हैं, तो उस समय को और आज के समय को कैसे नाप तोल करते हैं, कितना परिवर्तन आ गया सर मीडिया इंडस्ट्री में?
1: नहीं, मीडिया इंडस्ट्री बिल्कुल बदल गया है। मैंने तो टाइपराइटर से शुरू किया था
0: जी।
1: मैं मेरे पास रिमिंगटन का एक टाइपराइटर होता था, और मुझे याद है कि अडवाणी जी की रथ यात्रा थी, और रथ यात्रा के बाद वाली यात्रा थी। रथ यात्रा में तो वो अरेस्ट हो गए थे बिहार में, लेकिन जब वो यूपी में घुसे तो मैं उनके साथ साथ चल रहा था
0: जी।
1: तो मेरे गोद में टाइपराइटर रहता था और उसमें मैं लिखता था, और उस जमाने में फैक्स आ गया था, तो फैक्स से मैं स्टोरी फाइल करता था। तो वहां से लेके आज तक चीजें बहुत बदल गई हैं। मुझे याद है बरेली में एक बार दंगे हो गए
0: जी,
1: और मैं वहां पे गया एज रिपोर्टर। ये बात है शायद 88 की
0: जी।
1: तो उस समय कुछ भी नहीं था, उस समय फैक्स वगैरह नहीं था।
0: अच्छा, उस समय तक नहीं आया?
1: नहीं आया था जी। तो टेलेक्स के लिए मैं गया, वो CTO होता था
0: जी,
1: सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस
0: जी।
1: तो CTO पे मैं गया और मैंने उनसे पूछा कि भाई आपका टेलेक्स से हम भेज सकते हैं? तो टेलेक्स चलता नहीं था, तो मतलब हम लोग को भाग के आना पड़ता था। 91 में पीलीभीत में कुछ सिखों को बस से उतार के मारा गया, वो स्टोरी मैंने ब्रेक की
0: जी।
1: लेकिन मुझे 2 दिन बाद लौट के आना पड़ा, और लखनऊ में आके मैंने वो स्टोरी फाइल की, फिर वो गया दिल्ली और तब वहां पे छपा। तो हमारे पास टाइम गैप 2 दिन होता था, अब तो 1 सेकंड का नहीं है।
0: और 1 सेकंड भी अगर आपने डिले किया तो आपका सामने वाला जो प्रतिद्वंदी है वो उस न्यूज के साथ आगे बढ़ जाता है।
1: हाँ।
0: और दूसरी जगह शायद वो न्यूज अगर डिले हो रही है तो वो बासी रूप में हमारे सामने आ रही है।
1: हाँ,
0: तो ये आपने परिवर्तन कहीं ना कहीं देखा।
1: टेक्नोलॉजी ने बहुत चेंज किया। टेक्नोलॉजी ने देखिए एसेंस
0: के लिहाज से मैं आपसे जरूर जानना समझना चाहूंगा सर कि कितना सिद्धांतों के साथ समझौता किया जा रहा है। आज आपको भी बहुत बुरा लगता होगा कि हम उस दौर से निकल कर आए जहां हमने बहुत गहराई से काम किया है, शिद्दत से काम किया है, मेहनत से काम किया है, और आज के समय में हम देखते हैं कि वो सारी चीजें नहीं है। आज के समय में हम ये देखते हैं कि सर एक यूट्यूबर भी पत्रकार बनने की कोशिश कर रहा है, एक इन्फ्लुएंसर भी पत्रकार बनने की कोशिश कर रहा है, उसको उसके एथिक्स पता नहीं है, जिसकी वजह से एक बड़ी चिंगारी भड़क सकती है, बहुत कुछ गलत हो सकता है। ये बहुत खूबसूरत सवाल आपसे बात करते करते मेरे जहन में आया, तो यहां पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं और उसके बाद ये जो बातों का सिलसिला है इसको हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपने मुझे पहले भी बताया कि आप रेट्रो यानी कि पुराने गानों को अपने दिल के आसपास रखते हैं, और शैलेंद्र साहब का जिक्र किया, तो क्यों ना मैं एक और गाना उन्हीं के पिटारे से निकाल कर लेकर आता हूं आपके लिए। तो ये ब्यूटीफुल ट्रैक सर आपके लिए सिर्फ सुरोशादा 90.8 FM पर। दोस्तों आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। पत्रकारिता क्षेत्र के दिग्गज आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बहुत बड़ी हस्ती हैं, बहुत एक अच्छे अनुभव के साथ आप आते हैं और उस अनुभव को ऐसे गुणी जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके साथ

0: अगर आप बैठते हैं, संगत करते हैं, उनसे आप सीखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी जिंदगी में परिवर्तन आ सकता है और बहुत कुछ आप हासिल करते आप समाज में एक सकारात्मक दिशा में परिवर्तन ला सकते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं 4 दशक के अनुभव के साथ, बड़े बड़े चैनल्स में काम कर चुके हैं अजय सिंह जी। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: ब्रेक पर जाने से पहले मेरा सवाल था, मैं उसको अब दोहरा देता हूँ क्योंकि कुछ लिसनर्स हमारे साथ जुड़े होंगे। हमने बात की थी कि सिद्धांतों की, उस समय के जो सिद्धांत थे आज के समय में जब चीजों को आप देखते हैं तो बहुत परिवर्तन नजर आया होगा, जमीन आसमान का परिवर्तन होगा। आज के समय में जब हम जिक्र कर रहे हैं, जैसे आपने जिक्र किया टेक्नोलॉजी का, सेकेंड्स में बातें आगे तक चली जाती हैं। वहीं यूट्यूबर हैं सर, जो इन्फ्लुएंसर हैं, जिनको शायद कुछ मालूमात हासिल नहीं है, कुछ ऐसा गलत अगर वो प्रेषित कर देते हैं, कुछ कह देते हैं जिसकी वजह से माहौल खराब हो सकता है, क्या कहना चाहेंगे सर?
1: देखिए, एक चीज़ तो मैं बहुत साफ कर दूं कि मैं उनमें से नहीं हूं जो ये कहे कि पास्ट में हम बहुत अच्छा और बहुत वैल्यू बेस्ड लेके चलते थे और नया जनरेशन वैल्यू बेस्ड नहीं है। हमें लगता है कि जितना पास्ट में जो था उससे नया जनरेशन हमेशा अच्छा होता है
0: जी।
1: तो हम पास्ट बहुत अच्छा था, नया खराब है, ये इनमें हम बिल्कुल नहीं है
0: जी।
1: दूसरा चीज ये है कि अगर आपको हम सच बताएं तो आप देखिए, तो पहले के टाइम में भागलपुर रॉयट्स हुए थे, भागलपुर रॉयट्स को पब्लिक में आने में महीनों लग गए क्योंकि किसी को पता ही नहीं चला,
0: नहीं पता चला वो सही।
1: और जब रिपोर्टर वहां गया तो वो फील्ड में लोगों को मार के वहां पे खेती हो गई थी
0: जी।
1: आज के दिन ये संभव नहीं है।
0: नहीं।
1: तो अगर यूट्यूबर एक ये कर देता है, वो ट्रेंड जर्नलिस्ट नहीं है और वो आपके लिए ये मुश्किल करता है कि आपको ये पता चल जाता है कि ये घटना यहाँ हुई है, तो उसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी ने ये तो कर दिया है कि कोई भी आदमी अगर उसके हाथ में कैमरा है, स्मार्टफोन है, तो वो चीजें लेके और आपको दिखा देगा। अब रही बात उसकी कि उसमें इथिकल सवाल और ये सब है, ये सवाल पहले भी थे, ये सवाल आज भी है
0: और आगे भी रहेगा
1: और वो आगे भी रहेगा। लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पत्रकारिता में होने से या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंफॉर्मेशन में होने से, हम आपको बता दें कि आप इस देश में अब रॉयट्स आसानी से नहीं होते हैं। अगर कुछ भी चीज होती है, कोई भी इनजस्टिस होता है, तो लोगों के पास पहुंच जाता है और लोग जानते हैं, वो बोले ना ये अलग बात है। तो अब वो चीज खत्म हो गई है। तो टेक्नोलॉजी ने जहां पे आपको इम्पावर किया है वहां पे उसके एक साइड इफेक्ट्स हैं। तो साइड इफेक्ट्स आप डील कर सकते हैं, साइड इफेक्ट्स को डील चाहिए भी। हमारा कहना यह है कि जो पत्रकारिता का एसेंस था, जो पहले था, वही आज भी है
0: जी।
1: और सच बताएं तो नए लड़के जब मैं देखता हूं तो मुझे उन पे ज्यादा विश्वास होता है। हमें लगता है कि उनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं एंड दे आर वेरी गुड।
0: नो डाउट।
1: तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जो बात का जनरेशन, हाँ उसके लिए चैलेंज हो गया है और वो चैलेंज इकोनॉमी की वजह से हुआ है। क्योंकि आप देखिए तो जो न्यूज़ प्रिंट की इकोनॉमी जो हम लोग के टाइम में थी, वो इकोनॉमी पूरी चेंज हो गई है। टेक्नोलॉजी ने ये कर दिया है कि मतलब हर आदमी के पास इंफॉर्मेशन है और पैसा वो देता है कि नहीं। तो एक मीडिया सेक्टर में, पूरे मीडिया सेक्टर में वो एक सीरियस प्रॉब्लम आई है जिससे कि डील कर रहे हैं। लेकिन वो प्रॉब्लम तो है जो टेक्नोलॉजी ने डिसरप्शन किया है, वो है डिसरप्शन।
0: चूंकि बात बहुत अच्छी आप कर रहे हैं सर, मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा, मेरे श्रोता भी इस बात को ध्यान में रखेंगे। लेकिन सर, कोई अगर आपकी तरफ से आपके अनुभव के आधार पर कोई आप एक इंस्ट्रक्शंस देना चाहें, दिशा निर्देश आपके ये रहें कि अगर आपको मालूमात नहीं है तो उस पर बढ़ चढ़ कर ना बोलें क्योंकि माहौल ख़राब हो सकता है और बात बिगड़ सकती है, और जब न्यूज़ आगे फैल जाती है तो दिक्कतें परेशानियाँ भी यूँ कहें कि वो पता चल जाता है कि ये फेक न्यूज़ कहाँ से क्रिएट हुई थी। फेक न्यूज़ भी आज के समय में बहुत ज़्यादा है, चैनल पर उसको वेरीफाई किया जाता है, तब बड़े बड़े चैनल्स उस पर आगे अपनी बात रख पाते हैं और पब्लिक अवेयर हो रही है। जैसे आपने कहा कि टेक्नोलॉजी के समय में लोग फैक्ट चेक कर लेते हैं, इट्स राइट और नॉट, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो खुद से पत्रकार बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको मतलब इसीलिए कुछ पता ही नहीं?
1: देखिए, एक चीज़ तो बहुत साफ है कि पत्रकार कोई खुद से नहीं बन सकता है। आप एक सर्टेन ट्रेनिंग होती है और जर्नलिज्म के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल इथिकल दोनों होती
0: क्या
1: है,
0: बात है क्या?
1: तो वो आप में अगर नहीं है तो आप पत्रकार नहीं है। तो इसीलिए पत्रकारिता अलग है, जो सोशल इन्फ्लुएंसर हैं वो एक अलग जॉब है,
0: उस कैटेगरी में नहीं,
1: वो नहीं आएंगे, पत्रकार में नहीं आएंगे। अच्छा, इसी वजह से आपको बताएं, जैसे अभी तो वर्ल्ड ओवर ये चल रहा है डिबेट कि फेसबुक ने एल्गोरिदम के तौर पे रोहिंग्यास वाला रॉयट बर्मा में, म्यांमार में, सिर्फ इसलिए कि रोहिंग्यास के एंटी अगर वो जाएगा तो एल्गोरिदम में वो बढ़ रहा था, तो एल्गोरिदमिक ढंग से वो रॉयट्स हो गए वहां पे
0: जी।
1: तो ये सारी चिंता तो पूरे वर्ल्ड में चल रही है कि सोशल मीडिया का ये जो आस्पेक्ट है ना, कि वो एल्गोरिदम से गाइडेड होता है, वो इथिक्स से गाइडेड नहीं होता है। तो अगर एल्गोरिदम से गाइडेड होगा तो वो इमोशनलेस होगा।
0: असर इस चीज को, इस वर्ड को अगर आप थोड़ा समझाना चाहें तो मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगा जिस वर्ड का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ये पता नहीं है। एथिक्स की बात तो चलो हम समझ में आ गए, जो एल्गोरिदम का आप जिक्र कर रहे हैं,
1: जैसे मान लीजिए कोई चीज, हम फर्स्ट पोस्ट में काम करते थे तो हम लोग के पास ये होता था कि मेरी स्टोरी जो हमने लिखी है वो कितनी ज्यादा देखी गई, पढ़ी गई, उस पर लोगों ने टाइम स्पेंड कितना किया। उसमें कई कीवर्ड्स होते थे जो एल्गोरिदम से गाइडेड होते थे, तो उसको जब ट्वीट भी किया जाता था या वो किया जाता था तो वो वर्ड्स जो कि लोग ज्यादा देखेंगे उसलिए उसको उसी ढंग से ट्वीट करते थे या उसको फेसबुक पे डालते थे। ये होता है एल्गोरिदम से गाइड होना। और फेसबुक या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी उसी से गाइड होते हैं। उनको पता होता है कि वर्ल्ड ओवर क्या ट्रेंड चल रहा है, लोग क्या देख रहे हैं, तो लेकिन वो हमेशा इथिकल होगा ये सही नहीं है।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। दोस्तों ये जो सवाल था, यही जवाब सर से हम सुनना समझना चाह रहे थे, और ये सवाल का जवाब आपके लिए था कि इस भाषा को, इस परिभाषा को आप आत्मसात करिए कि अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है तो उस पर विश्वास मत करिए, उसके बारे में जांच पड़ताल करिए क्या ये सही है या गलत है। और जब आप अच्छी न्यूज़, अच्छी बातें प्रेषित करते हैं तो कहीं ना कहीं समाज में लोग जागरूक भी होते हैं और जिससे वो लाभ भी उठा रहे होते हैं। तो कुल मिलाकर प्यार बांटते चलिए, खुश रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सुरक्षा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं, एक शख्सियत हैं मीडिया जगत के, बहुत बड़े अनुभव के साथ आप आते हैं और लगभग 4 दशक+ का अनुभव है सर के पास। आप हैं अजय सिंह सर। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम।
1: थैंक यू।
0: राष्ट्रपति जी का जिक्र आपके इस बायोडाटा में हो रहा है। प्रेस सचिव के रूप में आपने वहां काम किया और एक नहीं, ये आपकी खुशनसीबी है कि दो दो राष्ट्रपति के साथ आपने काम किया है। भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के साथ और अभी वर्तमान में जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मैम के साथ आपने काम किया। तो वो जर्नी कैसी रही, कैसे आप वहां पहुंचे और कैसा माहौल हुआ करता था, वो प्लीज आप बताएं सर।
1: राष्ट्रपति भवन तो बिल्कुल ही अलग असाइनमेंट था क्योंकि हम तो फील्ड में रिपोर्टिंग करते रहे हैं
0: जी।
1: तो ये दरअसल अपॉइंटमेंट होता है जो ACC अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट जो प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं तो उनका उनसे होता है और राष्ट्रपति जी अप्रूव करते हैं। तो इस तरह से ये एक सरकारी अपॉइंटमेंट होता है, सरकारी अधिकारी के रूप में हमने वहाँ काम किया है और जर्नी बहुत अच्छी रही क्योंकि राष्ट्रपति जी के साथ काम करना अपने आप में एक
0: बड़ी बात।
1: हाँ, एक हमारे लिए भी वो था क्योंकि हम मीडिया में थे तो मीडिया में हम फेंस के दूसरे साइड थे, सरकार के साइड में हम नहीं थे। जब हम इस तरफ आए तो कई चीज़ें पता चली कि शायद वहाँ पे अगर हम होते तो जो चीज़ न्यूज़ बन जाती वो न्यूज़ नहीं थी। या हम जितना जानते हैं जिस पे हम न्यूज़ बनाते हैं उससे 10 times ज़्यादा वहाँ पे हो रहा होता है। तो ये सब चीज़ें हमें वहाँ पे समझ में आई और वो मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। कैसे हेड ऑफ द स्टेट आते हैं, कैसे डेलीगेशन लेवल टॉक होते हैं, बैंक्वेट होते हैं, तो उसमें बातचीत क्या होती है, तो वो उसमें अच्छा। और दूसरा हमारा ये जो रोल था इसमें जब भी प्रेसिडेंट का इंटरफेस किसी से भी होता था तो उसमें हमारा रोल आता था। प्रेस सेक्रेटरी का रोल होता है, यानी अगर वो स्पीच दे रही हैं या उनका ट्वीट जा रहा है या कहीं पे भी बात कर रही हैं तो उसमें इनवेरिएबली जो प्रेस सचिव होता है उसका रोल होता है, उन्हीं को देना होता है सब
0: ये।
1: तो हाँ, तो वो अच्छा एक अनुभव था। दूसरा हमारे पूर्व जो पूर्ववर्ती थे उसमें भी काफ़ी इलस्ट्रियस लोग हैं, जयशंकर जी भी रहे हैं।
0: अच्छा,
1: प्रेस सेक्रेटरी। तो इंटरेस्टिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग।
0: मैं और भी देख रहा था आपकी बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्पी, आपने बहुत अपनी बातें रखी हैं। अगर अदरवाइज मैं देखूं कि बहुत लंबा लिखा जा सकता था आपके बारे में, लेकिन आपने बहुत कम शब्दों में बातें रखी हैं। तो मैं एक पक्ष पर ये जानना समझना चाहूँगा, इस वो ध्यान लेकर जाना चाहूँगा आपका कि आप किताबों का जिक्र कर रहे हैं और जो किताबें हैं जो पब्लिश हुई हैं तो उसके बारे में बताइए, वो जर्नी कैसी रही, कौन कौन सी किताबें आपकी आई।
1: वो किताब एक ही किताब है मेरी जो पेंगविन ने छापी थी और वो है द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू BJP। ये दरअसल प्राइम मिनिस्टर पे है और प्राइम मिनिस्टर के ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स पे है कि प्राइम मिनिस्टर ने किस तरह से BJP को एक नए संगठन का ढांचा दिया और वो ढांचे में जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं पार्टी बिल्डिंग के, उस मेथड से वो कहाँ कहाँ अलग हुए और कैसे उन्होंने एक ऐसा BJP बनाया जो कि कांग्रेस जो 50s और 60s में जिस स्थिति में था 50 में आज़ादी के जस्ट बाद, BJP आज उसी तरह की पोजीशन में है। और इलेक्शन हारना जीतना एक अलग बात है, आप हो सकता है कि इलेक्शन हार जाएं या जीते जो भी होगा, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशनल ढांचा इतना बड़ा खड़ा हो गया है कि BJP एक प्रिंसिपल पोल बन गया है, उसके इर्द गिर्द सारी पॉलिटिक्स होगी रिवॉल्व। कांग्रेस का जो 60-70 तक था, तो हमारा वही थीसिस था, उसी पे हमने रिसर्च किया था और करीब जो ये करीब 4 साल चला था रिसर्च और करीब 100 ऐसे लोग जो प्राइम मिनिस्टर के साथ काम किए हों उनसे हमारी बात बात हुई थी और
0: उस अनुभव के आधार पे आपने
1: उस अनुभव पे और जो हमने खुद भी देखा। दरअसल 95 में जब हम आए थे तो उस समय भी प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे BJP में थे, दिल्ली में थे, सेक्रेटरी थे पार्टी के। तो उस समय से जो हम देखते थे उसके हिसाब से और कई लोगों से बात करके और उसके हिसाब से हमारा एक अपना आकलन था, वो हमने लिखी और उसका इंट्रोडक्शन लिखा। वॉल्टर एंडरसन एक हैं, वॉल्टर एंडरसन ने बीजेपी और आरएसएस पे काफ़ी काम किया है, ब्रदरहुड इन सैफरन उनकी किताब है।
0: बहुत अच्छा सर। तो ये जो जर्नी आपकी रही है बहुत अच्छी जर्नी रही है और जिस एक नई जर्नी में आप कदम रखने जा रहे हैं और उसके लिए भी आपको बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस यात्रा में हम सब आपके साथ हैं और इस यात्रा का हम लुत्फ उठाना चाहेंगे, आपकी संगत करना चाहेंगे, आपसे बारीकियों को हम सीखना समझना चाहेंगे, क्योंकि आप शारदा यूनिवर्सिटी के SSMFE को आप ज्वाइन कर रहे हैं और उसके लिए आपको बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। साथ ही साथ मैं ये आखिर में ये समझना चाहूँगा, अगर आपकी तरफ से कोई एक कहते हैं ना कि आने वाली जनरेशन को कोई एक मंत्र या यूँ कहें कि कोई दिशा निर्देश या फाइनली यूँ कहें कि कोई एक ऐसा गुरु मंत्र जिनको वो ध्यान रखते हुए जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं।
1: देखिए मैं कोई स्पिरिचुअल लीडर तो हूँ नहीं जो कि मैं मंत्र दूंगा, लेकिन हाँ नई जनरेशन से हमें भी काफ़ी कुछ सीखना होता है तो। और दूसरा, इंटरेक्शन के साथ कई चीज़ें हमें मालूम चलेगी उनके बारे में, उनके एस्पिरेशन के बारे में, उनके थॉट प्रोसेस के बारे में, और कई चीज़ें हमारी होंगी जो कि शायद उनको लगे कि इस लायक हैं कि उसको वो इम्बाइब करें।
0: बहुत खूबसूरत। इसके बारे में ज़रूर समझना चाहूँगा कि आपकी मुस्कुराहट बड़ी अच्छी है, लोग कनेक्ट कर पाते हैं, अदरवाइज़ तो लोगों के चेहरे पर मुस्कान नहीं रहती। दिक्कतें परेशानी हर किसी की ज़िंदगी में है, जिस राह पर आप चल रहे हैं हर्डल्स आएंगे, ब्रेकर्स आएंगे, तो उन चुनौतियों से आगे बढ़ते हुए हम कैसे मुस्कुराते हुए अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं?
1: नहीं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है मुस्कुराने के सिवा। तो जैसा मैं हूँ वैसा हूँ।
0: क्या बात है। चलिए, ये जो बातों का सिलसिला है, ये जो सफर रहा हमारा, यकीन के साथ

0: उसे सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने वैल्यूएबल थॉट्स हमारे साथ शेयर किए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप थे हमारे साथ अजय सर, जो कि बहुत बड़े अनुभव के साथ आते हैं। ये विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लगा, ये जो संपर्क सूत्र के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं बताएगा जरूर। मैं ले रहा हूँ आपसे अनुमति, फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।

फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और

0: टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
2: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
1: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
3: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड

ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए। तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: अभियान।
1: इस अभियान का आह्वान, यदि है आपको टीबी के लक्षण तो जल्द जांच से ही होगा सबसे तेज समाधान। टीबी होने पर जल्द जांच से उपचार में आती है तेजी और गंभीर बीमारी का खतरा होता है कम। सुरक्षित होता है आपका परिवार और अन्य करीबी जन। कुछ समूहों में टीबी का खतरा अधिक होता है, जैसे वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान और शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित,
2: टीबी रोगी के साथ रहते हों,
1: मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग, तो टीबी के लक्षण होने पर अपने नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निःशुल्क जाँच और उपचार पाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
3: टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
1: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: सफाई ही आधा ईमान है,
1: यानी स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है।
0: और ये भी तय है, स्वच्छ रहकर ही हम तमाम बीमारियों को मात दे सकते हैं।
1: कैसे, कब कब हाथ धोने चाहिए, चलिए ये हम आपको बताते हैं।
0: खाना बनाने से पहले,
1: खाना खाने से पहले,
0: बच्चों को खाना खिलाने से पहले,
1: शौचालय के प्रयोग के बाद,
0: बच्चों के मल को साफ करने के बाद,
1: बाहर से आने के बाद,
0: पशु को छूने और उनके मलमूत्र को साफ करने के बाद,
1: खांसने और छींकने के बाद साबुन और साफ पानी से अपने हाथों को धोएं और हर बार हाथों को कम से कम 40 सेकंड तक धोएं।
0: हमारा भविष्य हाथों में है,
1: हम साथ मिलकर आगे बढ़ें।
0: यूनिसेफ के सहयोग से
1: सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा
0: जनहित में जारी।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। भाई, जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुट जाते हैं, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातें आप तक पहुंचा रहे होते हैं। कोरोना का समय हम सबने देखा और जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारा मारी थी, अगर ये ऑक्सीजन हमें क्षण भर न मिले तो सच बात तो ये है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से नेचर का ख्याल रख सकते हैं, कुछ ऐसी ही बातें, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर अगर आप 5 फल और सब्जियां खाएंगे तो शरीर को भरपूर रूप से मिलेगी आपको एनर्जी। जी हाँ, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कैसे कंट्रोल रखें। लेकिन इससे हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप पौधे लगाएंगे, किसी पौधे को सींचेंगे तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा वटवृक्ष का रूप धारण कर लेगा जो कि आगे चलकर आपको ऑक्सीजन देगा ही देगा। इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाले कुछ फूड्स के बारे में जानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह पानी की जरूरत होती है उसी तरह ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। ये कोशिकाओं को बनाने के साथ साथ उनके बेहतर कार्यों में मददगार होती है। ऑक्सीजन हवा के जरिए शरीर को प्राप्त होता है। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है। ऐसे में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ प्रयास की जरूरत है। शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ खाद्य पदार्थों की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में। पालक से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे जानते हैं। पालक स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी होता है। ये न सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है बल्कि इससे आप शरीर में आयरन की कमी को भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आयरन की मदद से शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बेहतर होता है जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। इसके साथ ही ये आपके शरीर की मांसपेशियों की मजबूती को भी बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं शकरगंद से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर आप शकरगंद का सेवन कर सकते हैं। शकरगंद एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी अच्छा स्रोत है। इसकी मदद से आप शरीर के अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत होता है जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बात ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाए एवोकाडो, यानी शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में एवोकाडो भी काफी हेल्दी माना जाता है। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह सही तरीके से होता है जिससे शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में सुधार ला सकते हैं। बात नींबू की, नींबू है असरदार। नींबू अगर आप शिकंजी में मिलाकर पीते हैं तो जाहिर सी बात है नींबू यूं कहें कि शिकंजी के बगैर अधूरी है। नींबू अगर आप सलाद में डालते हैं तो सलाद स्वादिष्ट हो जाता है। नींबू पानी पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बड़ा ही लाभदायक है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर नींबू के रस का सेवन करें। नींबू के रस में मौजूद गुड़ शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने में असरदार होता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम आपके माइंड को अलर्ट रखने में असरदार होता है। बात तरबूज की, जी हाँ, तरबूज गर्मी के सीजन में हर रोज अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा और गर्मी के मौसम में बहुत तादाद में देखा जाता है तरबूज। जी हाँ, तरबूज से ऑक्सीजन की कमी से राहत मिलती है, कैसे जानते हैं। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। दरअसल तरबूज में अल्कालाइन की अधिकता होती है जो आपके शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन मौजूद होता है जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में असरदार है। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और हाँ, नेचर का ख्याल रखें। नेचर का ख्याल रखेंगे तो भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ।

0: things black.
1: मुझे भी तो मेहंदी लगा दे। देख लो, दो महीने के इलाज में इतना सुधार है तो अब तो मैंने दवा खानी भी बंद कर दी है।
2: टीबी की दवा तो 6 से 8 महीने लगातार चलती है। इसका मतलब कि आपने डॉट्स का कोर्स बीच में ही बंद कर दिया।
1: ये क्या, मेहंदी अधूरी क्यों छोड़ दी?
2: तुम डॉट्स का इलाज अधूरा छोड़ सकती हो और सोचती हो कि बात बन जाएगी। जानती हो ना, अधूरा इलाज यानी टीबी लाइलाज।
3: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़े। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
2: भाभी कल ही डॉट सेंटर चली जाना।
1: कल नहीं, अभी।
3: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत से ही लाभ गई। इसी के अंतर्गत एक खास बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, जब भी हम सफर पर निकलते हैं या निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं, नया स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं, तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं सोचते? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझके नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक विकल्प जानें। ये खास जानकारी सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से स्मार्ट के सहयोग से सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत मैं आप तक पहुंचा रहा था। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात के माध्यम से जन जन को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि जब आप 18 वर्ष के हो जाएं तो अपना वोटर कार्ड जरूर बनवाएं। वो कहते हैं कि इस उत्सव को अपने जन्मदिन के उत्सव की तरह ही मनाएं। आइए सुनते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। साथियों, मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है।

0: बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करे और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। आज मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। वो कह रहे थे कि वोटर कार्ड जरूर बनवाएं और वोट जरूर डालें। और जैसे ही आप अपना पहला वोटर कार्ड बनवाएं, तो उसे अपने जन्मदिन की ही तरह उत्सव के रूप में मनाएं। ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: आप सुन रहे कार्यक्रम सेहत सही लाभ कही और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। और आज हम आए हैं तुगलपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर और हमारे साथ में है डॉक्टर ऋषिका, उनसे हम बात करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं 9वां राष्ट्रीय पोषण माह चल रहा है और ऐसे में किस तरह से जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अपना ध्यान रखें, दूध पिलाने वाली जो महिलाएं वो किस तरह से अपने पोषण का ध्यान रखें, बच्चों के पोषण का कैसे ध्यान रखें। तो सबसे पहले डॉक्टर ऋषिका जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: और हम आपसे यही जानना चाहेंगे, अपना जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है तुगलपुर में, तो खास करके यहाँ पर क्या क्या स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को दी जाती हैं?
1: जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें मेनली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारा प्रायोरिटी पे होता है वो होता है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन में टीके लगते हैं गर्भवती महिलाओं को और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको टीके लगते हैं। और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके जैसे डिलीवरी का पूरा ध्यान रखना, आयरन कैल्शियम प्रोवाइड करना, उनके टीके का, उनका रिपोर्ट वगैरह, उनके छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो भी वो फेस करती हैं, और इवन डिलीवरी के बाद जब बच्चे को कोई अगर दिक्कत हो, ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह में दिक्कत हो, ये सब सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जाती हैं।
0: और इसके अलावा जैसे कोई यहाँ पर आसपास के मरीज भी आते हैं तो क्या क्या इलाज होता है या कौन कौन सी जाँचें यहाँ पे हो जाती हैं?
1: हाँ जी, सामान्य बीमारी जैसे आजकल स्वाइन फ्लू वगैरह बहुत चल रहा है, जैसे जो वायरल वगैरह चलते रहता है उसका हो जाता है। बाकी कोई स्किन डिजीज है जैसे फंगल इन्फेक्शन, रैशेज, एलर्जी वगैरह, इसकी भी फैसिलिटीज हैं। उसके बाद बहुत सारे हमारे पास एल्डरली पेशेंट्स आते हैं जिनके जॉइंट पेन वगैरह होता है, तो उसका भी इशू सॉल्व हो जाता है यहाँ पर। एंड यहाँ पे NCD स्क्रीनिंग होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज लाइक शुगर एंड BP, शुगर की दवाई मिलती है, BP की जाँच हो जाती है। एंड यहाँ पे डेंगू मलेरिया आजकल कई मौसम में बहुत फैला हुआ है, तो डेंगू मलेरिया की जांच होती है। प्लस यहाँ पे HIV, सिफिलिस, इस सब की भी जांच होती है, HP की और हेपेटाइटिस की भी जांच हो जाती है।
0: तो कहने का मतलब यह है आपका कि जो भी सामान्य बीमारियाँ होती हैं, जो लोग बहुत पैसा बाहर खर्च करते हैं उनकी जो जाँच है यहाँ पर निःशुल्क हो जाती है। आपने बात की थी खास करके जो गर्भवती महिलाओं की या दूध पिलाने वाली महिलाओं की, तो बच्चों के लिए माँ का जो पहला दूध होता है कितना महत्वपूर्ण होता है स्वास्थ्य के लिए?
1: बहुत महत्वपूर्ण होता है। इवन मतलब कि 6 महीने तक तो बोला जाता है कि बच्चे माँ का दूध ही बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और माँ के दूध में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। मतलब कि जो छोटे बच्चों को इन्फेक्शन वगैरह होते हैं उससे लड़ने की ताकत, इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग जो प्रोवाइड करती है, क्योंकि बच्चे जब बॉर्न होते हैं तो इम्यून सिस्टम उनका बहुत वीक होता है, तो उनको ना ब्रेस्ट मिल्क से ही जो मदर सिक्रीट करती है ब्रेस्ट मिल्क, उसमें काफी एंटीबॉडीज वगैरह होती हैं जो बच्चे को हेल्प करती हैं उन बीमारियों से लड़ने के लिए।
0: तो कहने का मतलब है आपका कि माँ को अपने जो दूध है वो बच्चों को जरूर पिलाना चाहिए। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं खासकर देखा जाता है कहीं ना कहीं उनमें खून की कमी हो जाती है, तो इसकी क्या वजह होती है और गर्भ में पल रहा बच्चा है उस पर खून की कमी का क्या कुछ असर होता है?
1: हाँ जी, खून की कमी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है। फीमेल्स में वैसे भी थोड़ा हीमोग्लोबिन मेल्स के मुकाबले कम ही रहता है, इसके लिए आयरन की टैबलेट्स हमारे PSC में मिलती है और ये आयरन की टैबलेट्स मैंडेटरी होती हैं। इवन मतलब कि 1 मंथ फॉलिक एसिड खानी होती है, उसके बाद आयरन की टैबलेट्स दी जाती हैं। अगर खून की ज़्यादा कमी होती है तो आयरन की टैबलेट्स जिनमें 2 बार इवन दी जाती हैं। और इसके साथ साथ हम लोग मदर को एडवाइस करते हैं कि अपने खान पान पर बहुत ध्यान देना है, जैसे हरी सब्जियाँ जैसे पालक साग ये सब खानी है जिससे खून बनता है, चुकंदर का जूस हम जिनको बोलते हैं। हम उनको इवन विटामिन सी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें विटामिन सी से आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, तो ये सब उनको एडवाइस करते हैं। और उनका HP की जाँच करते हैं और अगर कमी होती है तो हम आयरन की टैबलेट्स पूरे प्रॉपर उनको प्रोवाइड करते हैं। और इवन कैल्शियम भी, कि उनको कैल्शियम की भी कमी हो जाती है मदर को, क्योंकि प्रेगनेंसी के वक्त क्या होता है आयरन कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, तो उसको जितना चाहिए होता है वो लेता ही है। इससे क्या होता है मदर में कमी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो ना इसमें ना हम लोग जो फीमेल्स हैं उनका वेट मेजर करते हैं, हमें लग रहा है कि बहुत कमजोर है, अंडर वेट है, तो हम उन्हें एक चार्ट बना के देते हैं, उन्हें एडवाइस करते हैं कि आपको दिन में 2 बार एटलीस्ट दाल पीनी है, आपको एक अच्छा आहार लेना है जिसमें सलाद होना चाहिए, कुछ प्रोटीन का सोर्स होना चाहिए और दूध पीना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक ग्लास हमेशा पीना है, तो ये सब तो हम उसको एडवाइस करते हैं।
0: और साथ ही साथ जैसे कोई गर्भवती महिला है तो कौन कौन सी जांचें कराना बहुत जरूरी होता है गर्भावस्था के दौरान?
1: गर्भावस्था के दौरान हम लोग पहले तो उसका हीमोग्लोबिन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता ही हमारे देश में एनीमिया मुक्त भारत एक वो भी चल रहा है कि हमें करना है, तो हीमोग्लोबिन का तो हर बार जब वो आती है तो जांच होती है। उसके बाद हम लोग उसका RBS करते हैं, ब्लड शुगर, क्योंकि कई बार वो भी होता है, जेस्टेशनल डायबिटीज भी होती है, तो जैसे डायबिटीज हो जाती है प्रेगनेंसी के वक्त, तो उसके लिए हम लोग शुगर का भी टेस्ट करते हैं, BP, क्योंकि क्लेम्शिया वगैरह होता है तो बीपी भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ज़्यादातर फीमेल्स का बीपी कम रहता है, तो हमने ग्लूकोज के पैकेट्स या ORS या बहुत ज़्यादा पानी पीने को कहते हैं। और उसके अलावा HIV की जांच हो जाती है, सिफिलिस की जांच हो जाती है, हेपेटाइटिस बी की जांच हो जाती है, और डेंगू मलेरिया भी हम लोग फीमेल्स में करते हैं। और साथ ही प्रेगनेंट फीमेल्स में 2 टीके लगते हैं टेटनस और डिपथीरिया के लिए, ताकि न्यूनेटल टेटनस बच्चे को ना हो, तो उसके लिए 2 टीके लगाए जाते हैं। उनको हम लोग ट्रैक करते हैं, उनका हम लोग पूरा डिटेल्स लिख के, और उनको टाइमली बुलाना, फ़ोन करना, ये सब चीज़ें हम करते हैं, उनका वेट वगैरह नापना, ये सब भी होता है।
0: तो क्या कुछ जागरूकता के कार्यक्रम भी आपके द्वारा चलाए जाते हैं?
1: हाँ जी बिल्कुल, हमारे यहाँ 5 CNMA और 3 आशाएं हैं। ये आशाएं डोर टू डोर विजिट करती हैं और उनको संचारी, जैसे हमारे यहाँ प्रोग्राम चल रहा है संचारी में, क्या होता है कि डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जो चीज़ें टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि कभी गंदा पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, गमलों में पानी नहीं होना चाहिए, और किसी टायर वगैरह में पानी तो नहीं है, या फिर कूलर वगैरह में पानी तो नहीं है, यहाँ पे लोग पानी स्टोर करके रखते हैं, तो उसमें करना, उनको एडवाइस करना कैसे क्या करना है, तो ये सब भी किया जाता है। और इवन यहाँ पे कुछ मोबाइल यूनिट्स भी आते हैं, तो जिससे जागरूकता के लिए उसमें स्पीकर होता है, वो लोग चलती हैं गाड़ियाँ, ताकि लोग और ज़्यादा अवेयर हो सकें, आशा भी जाती है हमारे उसके साथ।
0: अच्छा, संडे के दिन आप यहाँ पे कुछ खास कार्यक्रम चलता, तो उसके बारे में बताइए, क्या वो प्रोग्राम है?
1: हाँ जी, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि संडे को ज़्यादातर अस्पताल बंद रहते हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता था, और ऐसे पहले था भी, बट अभी कुछ टाइम से आरोग्य मेला संडे को लगता है, तो PSC 7 दिन खुला रहता है। जैसे लोग जो जॉब वाले हैं, जिनको टाइम नहीं मिलता है, तो वो संडे को भी आप आके यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
0: यानी कि संडे के दिन भी जो भी किसी को परेशानी है स्वास्थ्य संबंधी, वो यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि अपना यहाँ प्रवासी मजदूर बहुत ज्यादा रहते हैं, और आजकल कुत्तों की संख्या भी, बंदरों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, और वो काट भी लेते हैं, तो ऐसे में क्या जो इनके टीके लगते हैं वो सुविधा अपने है यहाँ पर?
1: हाँ जी बिल्कुल है, बेबीज के इंजेक्शन लगते हैं, ARV के इंजेक्शन बिल्कुल यहाँ पे अवेलेबल हैं, कभी भी कोई दिक्कत होती है तो हम लगाते हैं।
0: चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे फैमिली प्लानिंग के बारे में, तो इस पर भी आपके यहाँ से कुछ चर्चाएं होती हैं महिलाओं के साथ, और फैमिली प्लानिंग कितना जरूरी है?
1: फैमिली प्लानिंग हमारे देश में जहाँ आपकी सबसे ज्यादा आबादी है पूरे वर्ल्ड में, तो बहुत ही जरूरी है, और गवर्नमेंट बहुत इसके लिए मेथड्स ले रही है, लाइक इतने सारे कैंपेन शुरू कर रखे हैं, 2 बच्चे अच्छे और इस तरह के, वो तो करती है गवर्नमेंट, पर इसके साथ साथ हमारे PHC पे एक तो कॉन्डम्स मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप कभी भी ले जा सकते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स भी मिलते हैं, लाइक निक्षे वगैरह जो मिलता है लेके आपको अगर टेस्ट करना हो प्रेगनेंसी का। इसके साथ साथ माला एन मिलती हैं टैबलेट्स, कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स होती हैं, और सहेली वगैरह भी मिलती हैं, प्लस इसके साथ साथ इंजेक्शन भी लगते हैं, हर 3 महीने पर लगते हैं वो अंतरा के इंजेक्शन, तो ये सब फैसिलिटीज़ भी हमारे यहाँ हैं। जो हमारे यहाँ महिला आती है, पहले तो हम उनकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं कि उनके कितने बच्चे हैं घर में, कितना क्या है, और पहले सबसे पहले हम उनको स्पेस्ड प्रेगनेंसी के लिए एडवाइस करते हैं कि हर बच्चे में एटलीस्ट 3 साल का गैप होना चाहिए। हमारे यहाँ एक्चुअली यही होता है कि ज़्यादातर 1-1 साल का गैप होता है, इससे क्या होता है मदर की हेल्थ पर बहुत फ़र्क पड़ता है, और अल्टीमेटली बच्चे की हेल्थ पर भी फ़र्क पड़ता है, सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं मेंटल हेल्थ पे भी उनके बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि घर में बहुत छोटे बच्चे अगर 2-3 हों तो बहुत दिक्कतें होती हैं। तो उन्हें तो हम पहले ये एडवाइस करते हैं कि अगर आपने अभी बच्चा किया है तो एटलीस्ट 3 साल का गैप रखिए, ताकि आपका स्वास्थ्य थोड़ा रिकवर हो सके। उसके साथ साथ अगर उनके 2 बच्चे से ज़्यादा हैं, तो हम उनको यही बोलते हैं कि हमारे यहाँ उनको हम काउंसिल करते हैं कि हमारे यहाँ ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, आप प्लीज़ आइए और सबको इस सब का लाभ उठाइए, और हम उनको बताते ही हैं, मतलब आजकल के ज़माने में जहाँ पे इतनी महंगाई और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उनसे थोड़ा बात करते हैं, उनके पर्सनल लेवल पे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझाते हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर ऋषिका जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने आज रेडियो के माध्यम से हमारे श्रोताओं तक, खास करके जो समुदाय के लोग हैं उन तक पहुँचाई है, हमसे बात करने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज 26 सितंबर है और आज के दिन दुनिया भर में मनाया जाता है विश्व गर्भ निरोधक दिवस। और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य गर्भ निरोधक विकल्पों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, अनचाहे गर्भधारण को रोकना, साथ ही महिलाओं और युवाओं को अपने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है, ताकि वे सोच समझकर सही निर्णय ले सकें। साथियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अकॉर्डिंग दुनिया भर में लाखों महिलाएं आज भी आधुनिक और सुरक्षित गर्भ निरोधक साधनों से वंचित हैं, जिसके कारण अनियोजित गर्भधारण के मामले बढ़ जाते हैं। तो साथियों, इस विश्व गर्भ निरोधक दिवस के अवसर पर हमने तुगलपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की MOIC डॉक्टर ऋषिका जी से बात की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा परिवार नियोजन के बारे में, आइए जानते हैं।
1: फैमिली प्लानिंग हमारे देश में जहाँ आपकी सबसे ज्यादा आबादी है पूरे वर्ल्ड में, तो बहुत ही जरूरी है और गवर्नमेंट बहुत इसके लिए मेथड्स ले रही है, लेकिन इतने सारे कैंपेन शुरू कर रखे हैं, दो बच्चे ही अच्छे और इस तरह के, वो तो करती है गवर्नमेंट। पर इसके साथ साथ हमारे PHC पे एक तो कॉन्डम्स मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप कभी भी ले जा सकते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स भी मिलते हैं, लाइक निक्षे वगैरह जो मिलता है लेके आपको अगर टेस्ट करना हो प्रेगनेंसी का। इसके साथ साथ माला एन मिलती हैं टैबलेट्स, कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स होती हैं, और सहेली वगैरह भी मिलती हैं। प्लस इसके साथ साथ इंजेक्शन भी लगते हैं, हर 3 महीने पे लगते हैं वो अंतरा के इंजेक्शन। तो ये सब फैसिलिटीज़ भी हमारे यहाँ हैं। जो हमारे यहाँ महिला आती है, पहले तो हम उनकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं कि उनके कितने बच्चे हैं घर में, कितना क्या है, और पहले सबसे पहले हम उनको स्पेस्ड प्रेगनेंसी के लिए एडवाइस करते हैं कि हर बच्चे में एटलीस्ट 3 साल का गैप होना चाहिए। हमारे यहाँ एक्चुअली यही होता है कि ज़्यादातर 1-1 साल का गैप होता है। इससे क्या होता है, मदर की हेल्थ पर बहुत फ़र्क पड़ता है और अल्टीमेटली बच्चे की हेल्थ पर भी फ़र्क पड़ता है। सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ पे भी उनके बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि घर में बहुत छोटे बच्चे अगर 2-3 हों तो बहुत दिक्कतें होती हैं। तो उन्हें तो हम पहले ये एडवाइस करते हैं कि अगर आपने अभी बच्चा किया है तो एटलीस्ट 3 साल का गैप रखिए, ताकि आपका स्वास्थ्य थोड़ा रिकवर हो सके। उसके साथ साथ अगर उनके 2 बच्चे से ज़्यादा हैं तो हम उनको यही बोलते हैं कि हमारे यहाँ उनको हम काउंसिल करते हैं कि हमारे यहाँ ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, आप प्लीज़ आइए और सबको इस सब का लाभ उठाइए। और हम उनको बताते ही हैं, मतलब आजकल के ज़माने में जहाँ पे इतनी महंगाई है और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उनसे थोड़ा बात करते हैं, उनके पर्सनल लेवल पे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझाते हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर ऋषिका जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने आज रेडियो के माध्यम से हमारे श्रोताओं तक, खास करके जो समुदाय के लोग हैं उन तक पहुँचाई है हमसे बात करने के लिए और जानकारी देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा 90.8
5: एफएम। सुनो शारदा 90.8 एफएम और स्मार्ट खड़े हैं रणभूमि में लेकर जागरूकता की तीर कमान जो ग्रेटर नोएडा से मिटा देंगे टीबी का नामोनिशान। टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है। प्रत्येक टीबी के मरीज को उपचार के दौरान सरकार द्वारा ₹1,000 प्रतिमाह दिए जाते हैं, जिसके लिए मरीज का एक बैंक अकाउंट नंबर और आधार कार्ड होना जरूरी है। स्वास्थ्य सही लाभ कही, टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सके। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी यह है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बता दें। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में। ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। जी हाँ, बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा और इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि बच्चा सच बोलने में कभी आपसे कतराएगा नहीं और दूसरा उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ईमानदारी बच्चों में मासूमियत बरकरार रखने का काम करती है। आप बच्चों को झूठ बोलने के परिणामों के बारे में बताएं और उन्हें गलती स्वीकार करना सिखाएं। अच्छा स्वभाव यानी कि गुड मैनर्स टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए। अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल IQ तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है। अच्छा स्वभाव उसे उसके जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में। हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड्स सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बात करते हैं सम्मान की। सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। ये एक ऐसा भाव है जो हर बच्चे में होना चाहिए, फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी का आदर बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को शुरू से ही आदर सम्मान करने का भाव सिखाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं टाइम की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें अपना समय कब कहां खर्च करना है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और उस समय को बर्बाद करना आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं, सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए
2: ग्रामीण और गरीब तबके के मरीजों के लिए 500 बेड समर्पित किए हैं।
1: अब महंगे इलाज और दवाइयों से मिलेगा आपको छुटकारा,
2: क्योंकि सरकारी अस्पताल की तर्ज पर शारदा अस्पताल में आधारभूत जांचें, दवाइयां, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर की सलाह समेत सभी सुविधाएं मुफ्त दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
3: क्या आपको बुखार आ रहा है?
4: ये बुखार डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया का हो सकता है।
3: बुखार होने पर फौरन नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर दिखाएं।
4: सिर, हाथ, पांव और पेट पर सामान्य पानी की पट्टी रखें।
3: बुखार के दौरान पानी, शिकंजी, ताजी फलों का रस और नारियल पानी जैसे तरल पदार्थों का ज्यादा सेवन करें।
4: हल्के सूती कपड़े पहने और कमरे को ठंडा रखें।
3: डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई भी दवा का सेवन ना करें। झोला छाप चिकित्सकों से बचें।
4: संचारी रोग के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर
3: 1800180515 पर कॉल कर सकते हैं।
4: याद रखना, बुखार में देरी पड़ेगी भारी। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा ये जानकारी जनहित में जारी।

0: 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सुनो शारदा 90.8 FM
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज 26 सितंबर है और आज के दिन दुनिया भर में मनाया जाता है विश्व गर्भ निरोधक दिवस। और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य गर्भ निरोधक विकल्पों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, अनचाहे गर्भ धारण को रोकना, साथ ही महिलाओं और युवाओं को अपने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है, ताकि वे सोच समझकर सही निर्णय ले सकें। साथियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अकॉर्डिंग दुनिया भर में लाखों महिलाएं आज भी आधुनिक और सुरक्षित गर्भ निरोधक साधनों से वंचित हैं, जिसके कारण अनियोजित गर्भधारण के मामले बढ़ जाते हैं। तो साथियों, इस विश्व गर्भ निरोधक दिवस के अवसर पर हमने तुगलपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की MOIC डॉक्टर ऋषिका जी से बात की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा परिवार नियोजन के बारे में, आइए जानते हैं।
2: फैमिली प्लानिंग हमारे देश में, जहाँ आपकी सबसे ज्यादा आबादी है पूरे वर्ल्ड में, तो बहुत ही जरूरी है और गवर्नमेंट बहुत इसके लिए मेथड्स ले रही है, लेकिन इतने सारे कैंपेन शुरू कर रखे हैं, दो बच्चे ही अच्छे और इस तरह के, वो तो करती है गवर्नमेंट। पर इसके साथ साथ हमारे PHC पे एक तो कॉन्डम्स मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप कभी भी ले जा सकते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स भी मिलते हैं, लाइक निक्षे वगैरह जो मिलता है लेके आपको अगर टेस्ट करना हो प्रेगनेंसी का। इसके साथ साथ माला एन मिलती हैं टैबलेट्स, कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स होती हैं, और सहेली वगैरह भी मिलती हैं। प्लस इसके साथ साथ इंजेक्शन भी लगते हैं, हर 3 महीने पे लगते हैं वो अंतरा के इंजेक्शंस। तो ये सब फैसिलिटीज़ भी हमारे यहाँ हैं। जो हमारे यहाँ महिला आती है, पहले तो हम उनकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं कि उनके कितने बच्चे हैं घर में, कितना क्या है, और पहले सबसे पहले हम उनको स्पेस्ड प्रेगनेंसी के लिए एडवाइस करते हैं कि हर बच्चे में एटलीस्ट 3 साल का गैप होना चाहिए। हमारे यहाँ एक्चुअली यही होता है कि ज्यादातर 1-1 साल का गैप होता है। इससे क्या होता है, मदर की हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है और अल्टीमेटली बच्चे की हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है। सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ पे भी उनके बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि घर में बहुत छोटे बच्चे अगर 2-3 हों तो बहुत दिक्कतें होती हैं। तो उन्हें तो हम पहले ये एडवाइस करते हैं कि अगर आपने अभी बच्चा किया है तो एटलीस्ट 3 साल का गैप रखिए, ताकि आपका स्वास्थ्य थोड़ा रिकवर हो सके। उसके साथ साथ अगर उनके 2 बच्चे से ज़्यादा हैं तो हम उनको यही बोलते हैं कि हमारे यहाँ उनको हम काउंसिल करते हैं कि हमारे यहाँ ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, आप प्लीज़ आइए और सबको इस सब का लाभ उठाइए। और हम उनको बताते ही हैं, मतलब आजकल के ज़माने में जहाँ पे इतनी महंगाई है और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उनसे थोड़ा बात करते हैं, उनके पर्सनल लेवल पे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझाते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर ऋषिका जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने आज रेडियो के माध्यम से हमारे श्रोताओं तक, खास करके जो समुदाय के लोग हैं उन तक पहुँचाई है हमसे बात करने के लिए और जानकारी देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि हम सब जानते हैं आज 26 सितंबर है और आज के दिन दुनिया भर में मनाया जाता है विश्व गर्भ निरोधक दिवस और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य गर्भ निरोधक विकल्पों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, अनचाहे गर्भधारण को रोकना, साथ ही महिलाओं और युवाओं को अपने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है ताकि वे सोच समझकर सही निर्णय ले सकें। साथियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अकॉर्डिंग दुनिया भर में लाखों महिलाएं आज भी आधुनिक और सुरक्षित गर्भ निरोधक साधनों से वंचित हैं, जिसके कारण अनियोजित गर्भधारण के मामले बढ़ जाते हैं। तो साथियों, इस विश्व गर्भ निरोधक दिवस के अवसर पर हमने तुगलपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की MOIC डॉक्टर ऋषिका जी से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा परिवार नियोजन के बारे में, आइए जानते हैं।
1: फैमिली प्लानिंग हमारे देश में जहाँ आपकी सबसे ज्यादा आबादी है पूरे वर्ल्ड में, तो बहुत ही जरूरी है और गवर्नमेंट बहुत इसके लिए मेथड्स ले रही है, लेकिन इतने सारे कैंपेन शुरू कर रखे हैं, दो बच्चे ही अच्छे और इस तरह के, वो तो करती है गवर्नमेंट। पर इसके साथ साथ हमारे PHC पे एक तो कॉन्डम्स मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप कभी भी ले जा सकते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स भी मिलते हैं, लाइक निक्षे वगैरह जो मिलता है लेके आपको अगर टेस्ट करना हो प्रेगनेंसी का। इसके साथ साथ माला एन मिलती हैं टैबलेट्स, कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स होती हैं और सहेली वगैरह भी मिलती हैं। प्लस इसके साथ साथ इंजेक्शन भी लगते हैं, हर 3 महीने पे लगते हैं वो अंतरा के इंजेक्शंस। तो ये सब फैसिलिटीज़ भी हमारे यहाँ हैं। जो हमारे यहाँ महिला आती है, पहले तो हम उनकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं कि उनके कितने बच्चे हैं घर में, कितना क्या है, और पहले सबसे पहले हम उनको स्पेस्ड प्रेगनेंसी के लिए एडवाइस करते हैं कि हर बच्चे में एटलीस्ट 3 साल का गैप होना चाहिए। हमारे यहाँ एक्चुअली यही होता है कि ज्यादातर 1-1 साल का गैप होता है। इससे क्या होता है, मदर की हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है और अल्टीमेटली बच्चे की हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है। सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ पे भी उनके बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि घर में बहुत छोटे बच्चे अगर 2-3 हों तो बहुत दिक्कतें होती हैं। तो उन्हें तो हम पहले ये एडवाइस करते हैं कि अगर आपने अभी बच्चा किया है तो एटलीस्ट 3 साल का गैप रखिए ताकि आपका स्वास्थ्य थोड़ा रिकवर हो सके। उसके साथ साथ अगर उनके 2 बच्चे से ज़्यादा हैं तो हम उनको यही बोलते हैं कि हमारे यहाँ उनको हम काउंसिल करते हैं कि हमारे यहाँ ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, आप प्लीज़ आइए और सबको इस सब का लाभ उठाइए। और हम उनको बताते ही हैं, मतलब आजकल के ज़माने में जहाँ पे इतनी महंगाई और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उनसे थोड़ा बात करते हैं, उनके पर्सनल लेवल पे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझाते हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर ऋषिका जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने आज रेडियो के माध्यम से हमारे श्रोताओं तक, खास करके जो समुदाय के लोग हैं उन तक पहुँचाई है। हमसे बात करने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो शारदा।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका वही मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, अक्सर हम बीमार हो जाते हैं और कोई भी बीमारी हो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है और अक्सर हम जो बीमार होते हैं वो होते हैं स्वच्छता का ख्याल ना रखना या अपने शरीर का ध्यान ना रखना या ऐसी चीजें खा लेना जो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है या फिर प्रदूषित चीजों का उपयोग करना। तो ऐसे में स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अपने घर आंगन में, अपने आसपास और जहां पर भी जा रहे हैं वहां पर, चाहे हम सफर में हों, घर में हों या कहीं पर भी हों, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जब हमारे आसपास स्वच्छता होती है, हम अपने शरीर की स्वच्छता करते हैं तो बीमारियों से बचते हैं। और किसान मित्रों, आपको याद दिला दें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपने आसपास लोगों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए उपदेश दिया करते थे। उनका मानना था कि एक उत्कृष्ट राष्ट्र बनाने के लिए स्वच्छता बहुत जरूरी है। उन्होंने स्वच्छ भारत का सपना देखा था जिसके लिए वो चाहते थे कि भारत के सभी नागरिक एक साथ मिलकर देश को स्वच्छ बनाने के लिए कार्य करें। और महात्मा गांधी जी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था और इसको सफल बनाने के लिए भारत के सभी नागरिकों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की। तो आप भी इस अभियान से जुड़ सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जहां पर भी रहते हैं वहां स्वच्छता का जरूर ध्यान रखें। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य केवल आसपास की सफाई करना नहीं है बल्कि नागरिकों की सहभागिता से अधिक पेड़ लगाना, कचरा मुक्त वातावरण बनाना, शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराकर एक स्वच्छ भारत का निर्माण करना है। और किसान मित्रों, देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ भारत का निर्माण करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसान मित्रों, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, खुद भी स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और औरों को भी स्वच्छता की बात बताएं और पेड़ जरूर लगाएं और जो भी कचरा है उसको इधर उधर ना फेंके, उसका प्रबंधन आप सही तरह से करें ताकि हमारा जो गली है, मोहल्ला है, गांव है, शहर है, सब स्वच्छ रहें और जिससे कि आपका स्वास्थ्य है वो बेहतर हो और साथ ही साथ हमारा जो पर्यावरण है वो भी सुंदर बने। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही स्वच्छ भारत अभियान की और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति रागनी। कलाकार हैं ज्ञानेंद्र सरधाना।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ये देशभक्ति रागनी, कलाकार थे ज्ञानेंद्र सरधाना। किसान मित्रों, हमारे शरीर में जो एक ताकत है वो हमेशा नहीं रहती, यानी कि धीरे धीरे जो काम करने की क्षमता है हमारे शरीर में, जो अंग काम कर रहे हैं वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। जब वृद्धावस्था आती है तो उस समय आप काम नहीं कर सकते, और जब आप काम नहीं कर सकते तो जो हमारे रोजाना के खर्चे हैं उनके लिए पैसे भी नहीं कमा सकते। तो वृद्धावस्था है वो हमारी अच्छे से कटे, इसके लिए सरकार ने एक योजना चला रखी है जिसका नाम है अटल पेंशन योजना, जो कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। अब बात करते हैं कि इस योजना में पात्र कौन हो सकता है। तो आपको बता दें कि जिनकी जो उम्र है 18 से 40 वर्ष की है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका एक बैंक में बचत खाता होना चाहिए और आप आयकर दाता नहीं होने चाहिए। और किसान मित्रों, अगर हम बात करें इस योजना के अंतर्गत पारिवारिक लाभ की, तो ग्राहक की मृत्यु के बाद पति या पत्नी को समान पेंशन मिलती रहेगी, और दोनों की मृत्यु के बाद 60 वर्ष की आयु तक संचित पेंशन राशि नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी। अब बात आती है कि इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें। तो आप बैंक में जाकर के, जहां पर भी आपका बचत खाता है वहां पर आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपके पास एक बचत बैंक खाता, आधार नंबर और मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना अटल पेंशन योजना के बारे में। और किसान मित्रों, अब आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति रागनी, कलाकार हैं ऋषिपाल खदाना।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ऋषिपाल खदाना से ये देशभक्ति रागनी। किसान मित्रों, आप अच्छी से खेती कर पाएं और जो रासायनिक उर्वरक हैं उनका उपयोग कम से कम कर पाएं, उसके लिए सरकार एक बहुत ही अच्छी योजना चला रही है जिसका नाम है प्रधानमंत्री प्रणाम योजना। किसान मित्रों, पीएम प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य देश में रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल को कम करके वैकल्पिक उर्वरकों को खेती में बढ़ावा देना है। इससे सरकार पर सब्सिडी का बोझ कम होगा और खेती में अन्य उर्वरकों के इस्तेमाल से खेती की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। इससे हमारे किसान भाइयों को बहुत फायदा होगा क्योंकि इससे खेती की लागत कम हो जाएगी। तो किसान भाइयों, ये तो बात रही पीएम प्रणाम योजना की, और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक और देशभक्ति रागनी। कलाकार हैं सुनील चौहान।

तो किसान मित्रों, सुनील चौहान द्वारा गाई गई इसी देशभक्ति रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

जन जन का रखें ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। सिर्फ खांसी टीबी का लक्षण नहीं, टीबी के और भी लक्षण हो सकते हैं। बलगम में खून आना, थकान, पुरानी बीमारी, रात में पसीना आना, वजन में गिरावट, हाल में हुए शारीरिक बदलाव, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ होना, सीने में दर्द, बुखार, बलगम वाली खांसी, तो आज ही जांच कराएं। और अधिक जानकारी के लिए निश्चय संपर्क हेल्पलाइन नंबर 1800 11 4 6 टोल फ्री पर कॉल कर सकते हैं।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि हम सब जानते हैं आज 26 सितंबर है और आज के दिन दुनिया भर में मनाया जाता है विश्व गर्भ निरोधक दिवस और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य गर्भ निरोधक विकल्पों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, अनचाहे गर्भधारण को रोकना, साथ ही महिलाओं और युवाओं को अपने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है ताकि वे सोच समझकर सही निर्णय ले सकें। साथियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अकॉर्डिंग दुनिया भर में लाखों महिलाएं आज भी आधुनिक और सुरक्षित गर्भ निरोधक साधनों से वंचित हैं, जिसके कारण अनियोजित गर्भधारण के मामले बढ़ जाते हैं। तो साथियों, इस विश्व गर्भ निरोधक दिवस के अवसर पर हमने तुगलपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की MOIC डॉक्टर ऋषिका जी से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा परिवार नियोजन के बारे में, आइए जानते हैं।
1: फैमिली प्लानिंग हमारे देश में जहाँ की सबसे ज्यादा आबादी है पूरे वर्ल्ड में, तो बहुत ही जरूरी है और गवर्नमेंट बहुत इसके लिए मेथड्स ले रही है, लेकिन इतने सारे कैंपेन शुरू कर रखे हैं दो बच्चे ही अच्छे और इस तरह के, वो तो करती है गवर्नमेंट, पर इसके साथ साथ हमारे PHC पे एक तो कॉन्डम्स मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप कभी भी ले जा सकते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स भी मिलते हैं, लाइक निक्षे वगैरह जो मिलता है लेके आपको अगर टेस्ट करना हो प्रेगनेंसी का। इसके साथ साथ माला एन मिलती हैं टैबलेट्स, कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स होती हैं और सहेली वगैरह भी मिलती हैं, प्लस इसके साथ साथ इंजेक्शन भी लगते हैं, हर 3 महीने पे लगते हैं वो अंतरा के इंजेक्शंस। तो ये सब फैसिलिटीज भी हमारे यहाँ हैं। जो हमारे यहाँ महिला आती है, पहले तो हम उनकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं कि उनके कितने बच्चे हैं घर में, कितना क्या है, और पहले सबसे पहले हम उनको स्पेस्ड प्रेगनेंसी के लिए एडवाइस करते हैं कि हर बच्चे में एटलीस्ट 3 साल का गैप होना चाहिए। हमारे यहाँ एक्चुअली यही होता है कि ज्यादातर 1-1 साल का गैप होता है, इससे क्या होता है मदर की हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है और अल्टीमेटली बच्चे की हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है। सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ पे भी उनके बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि घर में बहुत छोटे बच्चे अगर 2-3 हो तो बहुत दिक्कतें होती हैं। तो उन्हें तो हम पहले ये एडवाइस करते हैं कि अगर आपने अभी बच्चा किया है तो एटलीस्ट 3 साल का गैप रखिए ताकि आपका स्वास्थ्य थोड़ा रिकवर हो सके। उसके साथ साथ अगर उनके 2 बच्चे से ज़्यादा हैं तो हम उनको यही बोलते हैं कि हमारे यहाँ उनको हम काउंसिल करते हैं कि हमारे यहाँ ये फैसिलिटीज अवेलेबल है, आप प्लीज़ आइए और सबको इस सब का लाभ उठाइए। और हम उनको बताते ही हैं, मतलब आजकल के ज़माने में जहाँ पे इतनी महंगाई और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उनसे थोड़ा बात करते हैं, उनके पर्सनल लेवल पे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझाते हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर ऋषिका जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने आज रेडियो के माध्यम से हमारे श्रोताओं तक, खास करके जो समुदाय के लोग हैं उन तक पहुँचाई है। हमसे बात करने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगी?
1: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
0: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
1: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
0: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
2: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

नहाने के लिए शावर की जगह हमेशा बाल्टी का उपयोग करें। अगर शावर उपयोग भी कर रहे हैं तो छोटे वाले शावर लगवाएं, जिससे पानी की कम खपत हो। शावर का उपयोग न करके हम 40 से 45 लीटर पानी हर एक मिनट में बचा सकते हैं। फ्लश में भी बहुत अधिक पानी उपयोग होता है, इसलिए ऐसा फ्लश लगवाएं जिसमें पानी का फोर्स कम हो। सुनो शारदा 90.8 FM और यूनिसेफ की तरफ से जनहित में जारी है।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसका शीर्षक है हिंसा को नो. इस संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार. तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो हम आप तक पहुंचा रहे हैं. इसमें अब हमें सहयोग मिला है रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का. हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और ऐसे विशेष कार्यक्रम हमारे स्टेशन पर जो बनाए गए हैं दूसरे स्टेशन समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं. आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर.
3: जी हाँ, मैं यानी मीनाक्षी आपके लिए लेकर आई हूँ विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो. ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण पर आधारित है और इस कार्यक्रम को स्मार्ट संस्था जो कि नई दिल्ली में स्थित है उनके सहयोग से चलाया जा रहा है. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला हिंसा के विभिन्न पहलुओं को उजागर करना व उन्हें सशक्त करना ताकि वो इससे मुक्ति की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा सके. महिलाओं में गैर बराबरी की स्थिति का वर्णन करती आज की कहानी हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं. तो आइए सुनते हैं ये कहानी.
4: स्त्री हूँ मैं, मुझे देवी मत बनाओ, झूठी शान की बलि वेदी पर मुझे मत चढ़ाओ. सशक्त हूँ मैं, मुझे अबला मत बनाओ, हर महीने रक्तिम होना नियति है मेरी. अंधविश्वासों की जंजीरों में ना मुझे उलझाओ, उड़ना है मुझे भी उन्मुक्त गगन में. भ्रूण हत्या का पाप मेरे सिर पर मत चढ़ाओ. चाहती हूँ मात्र तुमसे समर्पण मन का, देह गान की गाथा में मुझको मत उलझाओ, मुझको मत उलझाओ. औरतें घर, ऑफिस या सार्वजनिक स्थल पर कहीं भी हिंसा का शिकार हो सकती हैं, लेकिन अपनों के द्वारा घर पर ही की जाने वाली घरेलू हिंसा के दायरे में आती हैं. जरूरी नहीं शारीरिक चोट ही हिंसा है, बल्कि किसी भी औरत को अपशब्द बोलना, उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करना भी हिंसा है. कहते हैं शब्दों की मार तो शारीरिक मार से भी ज्यादा गहरी होती है. शरीर के जख्म तो भर जाते हैं परंतु मन पर लगे जख्मों को भरने में बहुत समय लग जाता है.
3: दुनिया भर में लैंगिक असमानता को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं. कई लोगों का कहना है कि हमारे समाज की संरचना की वजह से ये लैंगिक भेदभाव ज्यादा फैलता है, परंतु बेटे की चाह में औरत को दिया जाने वाला मानसिक दबाव और प्रताड़ना सच में हमारे सभ्य समाज का एक शर्मनाक पहलू है. आइए आपको ले चलते हैं बिमला जी के घर, जहां उनकी बहू नेहा गर्भवती है

0: अरे ओ नेहा, सुनती क्यों नहीं हो तुम? नेहा,
1: क्या हुआ मम्मी जी?
0: कहाँ थी तुम?
1: मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी।
0: बस पूरा दिन आराम आराम आराम, जीना हराम करके रख दिया है हमारा।
1: लेकिन मम्मी जी, आराम नहीं करूंगी तो बच्ची को दिक्कत होगी।
0: क्या दिक्कत होगी? दिक्कत तो तब होगी ना जब लड़की होगी। चल डॉक्टर के पास।
1: डॉक्टर के पास किस लिए?
0: नेहा, मैंने कल भी बताया था कि जांच के लिए जाना है।
1: लेकिन मम्मी जी, जांच के लिए तो मैं कल ही गई थी ना।
0: मैं उस जांच की बात नहीं कर रही हूँ, लिंग जांच करवाना है।
1: ये क्या कह रही हैं मम्मी जी आप?
0: मुझे कुछ नहीं सुनना है, सीधा सीधा डॉक्टर के पास चलती हो या नहीं?
1: नहीं मम्मी जी, मैं लिंग जांच नहीं करवाऊंगी। ये बच्चा आपके बेटे का अंश है, आप कैसे बोल सकती हैं ये सब?
0: अच्छा, अब तुम मुझे समझाओगी कि क्या मुझे कहना चाहिए और क्या नहीं। सीधी तरह चलती हो या नहीं?
1: नहीं मम्मी जी, मैं नहीं जाऊंगी। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ।
0: सीधी तरह चलती हो कि नहीं?
1: नहीं मम्मी जी, मैं नहीं जाऊंगी।
0: देखो नेहा, मैंने पास के मोहल्ले वाले डॉक्टर से बात कर रखी है। लड़का हुआ तब तो ठीक है, अगर लड़की हुई तो यही की यही किस्सा खत्म कर दूंगी।
1: मैं ऐसा नहीं होने दूंगी मम्मी जी, ये मेरे शरीर का हिस्सा है। मात्र लिंग की वजह से आप उसे मुझसे अलग कर देंगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।
0: चलो नेहा।
1: नहीं मम्मी जी।
0: चलती हो कि नहीं?
1: नहीं मम्मी जी, मुझे नहीं जाना।
0: तुम सीधी तरह चलती हो कि नहीं?
1: छोड़ दीजिए मुझे, मुझे नहीं जाना कहीं भी।
0: चलो नेहा।
1: छोड़ो मुझे।
0: अरे सीधी तरह चलती हो कि नहीं, वरना मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी।
2: अरे माँ, पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो? नेहा गर्भवती है, उसको या बच्चे को कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और आप ऐसा कर भी कैसे सकती हैं माँ? किस तरह से आप उसके साथ जबरदस्ती कर रही हैं? इस हालत में इसके साथ खींचातानी करना कोई अच्छी बात है, कोई सही बात है? माँ आप ऐसा कैसे कर सकती हो?
0: तो तुम ही बताओ क्या करूँ मैं?
2: अरे माँ, करना क्या है, तुम परेशान किस लिए हो ये तो बताओ।
0: तो तुम क्या चाहते हो, इस बार भी इसको बेटी पैदा करने दूं?
2: अरे माँ, फिर क्या हो गया, आप इतना क्यों भड़क रही हो?
0: भड़कू नहीं तो और क्या करूं? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये पहले भी दो लड़कियां पैदा कर चुकी है?
2: तो माँ, इसमें इसका क्या कसूर है, आप ही बताओ, ये कोई इसके हाथ में थोड़ी ना है।
0: तो किसका कसूर है, मेरा? सच कहती हूँ बेटा, अगर इसने इस बार भी बेटी पैदा की ना, तो सीधा के सीधा मायके भेज दूंगी, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए।
2: अरे माँ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, किस लिए इतना भड़क रही हो? शांत होके बैठ तो जाओ माँ, लो बैठो कुर्सी में।
0: देखो बेटा, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, अगर लड़का नहीं होगा तो वंश आगे कैसे चलेगा?
2: देखो माँ, पहली बात तो ये कि बेटा होगा या बेटी, अभी से ये बहस क्यों कर रहे हो? क्यों आप इतना परेशान हो रहे हो कि बेटा ही चाहिए, बेटा ही चाहिए, आखिर क्यों माँ?
0: तो बहस नहीं करूँ और क्या करूँ, तुम ही बताओ।
2: माँ सुनो ना, जो भी होगा उसको हम प्यार से अपनाएंगे ना, किस लिए इतना परेशान होना माँ, क्यों आखिर?
1: अरुण, मैं भी माँ को यही समझा रही हूँ।
0: नेहा तुम चुप करो, हम दोनों बात कर रहे हैं ना।
2: अरे माँ, क्यों भड़क रही हो नेहा पर तुम? नेहा,

0: चलो आराम करो और तुम कोई भी टेंशन मत लेना। सुनो, माँ की बात का ना बुरा नहीं मानते, तुम इस अवस्था में अगर टेंशन लोगी तो बच्चे पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। चलो आराम से तुम अपने रूम में सो जाओ।
1: लेकिन अरुण, माँ तो अभी भी नहीं मान रही है।
0: अरे नेहा, तुम चिंता मत करो, मैं समझाता हूँ माँ को, वो समझ जाएंगी। माँ, माँ, अरे ओ माँ।
2: क्या है, बोलो।
0: माँ सुनो तो सही।
2: क्या सुनो, अब सुनने को रह क्या गया है।
0: माँ तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो।
2: देखो बेटा, मैं तुम दोनों के भले के लिए ही बोल रही हूँ। बेटा होगा तो वंश तभी तो आगे बढ़ पाएगा।
0: माँ सुनो ना, तुम भी कितनी भोली हो। देखो माँ, बेटा हो या बेटी, ये दोष औरत को क्यों देते हैं हम। औरत का इसमें कोई भी दोष नहीं है। पता है माँ तुम्हें, सबसे बड़ी भूल है हम सब की ये कि अगर बेटी हुई है तो ये औरत का दोष है। ऐसा कुछ भी नहीं होता माँ।
2: तो फिर किसका दोष होता है, तुम ही बता दो।
0: माँ, बेटा या बेटी पैदा करने का समर्थ्य केवल और केवल पुरुष के पास होता है।
2: ये तुम क्या कह रहे हो बेटा, ये कैसे हो सकता है, तुम ये कैसे कह सकते हो।
0: अरे मेरी भोली माँ, सही कह रहा हूँ।
2: तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम लोगों का बुरा चाहूंगी।
0: अरे माँ सुनो, पुरुष के पास एक्स के साथ वाई क्रोमोजोन होते हैं, औरत के पास केवल एक्स एक्स क्रोमोजोन होते हैं। पुरुष का एक्स और औरत का एक्स मिलकर बेटी को जन्म देते हैं, और पुरुष का वाई और औरत का एक्स मिलकर जो है ना माँ, वो बेटे के जन्म को मिलकर निर्धारण करते हैं। माँ तुम्हें पता है, ये एक वैज्ञानिक सच्चाई है जिससे बहुत से लोग जो है वो अनजान है। बहुत से लोग इस वैज्ञानिक सच्चाई को नहीं जानते हैं माँ, और मेरी भोली माँ तुम भी उनमें से एक हो। तुम भी ये वैज्ञानिक सच्चाई नहीं जानती हो, इसलिए तुम इस तरह से नेहा के साथ बिहेव कर रही हो, इस तरह से उसको डरा रही हो, उसको धमका रही हो। माँ अब मैं आशा करता हूँ कि तुम ये सारी बातें समझ गई होंगी। माँ क्या मैं ठीक कह रहा हूँ, क्या तुम समझ गई हो।
2: अरे बेटा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या तुम बोल रहे हो।
3: नमस्ते माता जी, और कैसी हैं आप।
2: नमस्ते नमस्ते, ठीक ही हूँ।
3: क्या हुआ माता जी, कुछ परेशान लग रही हैं आप।
2: ये बात जाके अपनी बहन से पूछो।
3: माता जी आखिर बात क्या है, कुछ हुआ है क्या घर पे।
2: होने को क्या है, तुम बहनों का बस चले तो तुम लोग मुझे जहर दे के मार डालो।
3: अरे माता जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं। अच्छा छोड़िए, ये बताइए नेहा कहाँ है।
2: कमरे में होगी, खुद जाके देख लो।
0: अरे माँ तुम सुबह से गुस्सा होके बैठी हो, अभी तक देखो आपने मुंह फुला के रखा हुआ है। ऐसी भी क्या बात होगी है माँ, अब क्यों गुस्सा हो। अब तो अपना गुस्सा ठंडा करो, अब तो अपने गुस्से को कम से कम आप शांत करो।
2: शांत क्या, खाक होना है। पहले एक थी अब दूसरी भी आ गई, अब दोनों कर रही होंगी चुगलियाँ मेरी।
0: अरे माँ तुम ऐसा क्यों सोच रही हो।
2: इसमें सोचना क्या, ऐसा ही है।
0: ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, मैंने ही बुलाया था, और वो उसकी देखभाल करेगी ना माँ। तुम इतना क्यों सोच रही हो,
2: हमने कोई कमी रखी है देखभाल में।
0: माँ मैं कब कह रहा हूँ कि हमने कमी रखी है, हमने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन फिर भी मैंने ही बुलाया था आशा को।
2: बड़ा ही अच्छा किया तुमने उसको बुलाकर।

0: अरे नेहा, तुम रो क्यों रही हो? हुआ क्या है?
1: दीदी।
0: अरे नेहा, ये चल क्या रहा है? यहाँ तुम रो रही हो, बाहर तुम्हारी सास चिल्ला रही है, बात क्या है?
1: क्या बताऊं दीदी, पिछले 3 हफ्ते से मेरे पीछे पड़े हैं, लिंग जांच करा। आप ही बताओ, इस नन्ही सी जान का क्या कसूर है? लड़का होगा या लड़की, है तो हमारा ही अंश ना।
0: अरे ये क्या चल रहा है इस घर में नेहा? अरे लड़का हो या लड़की, इस बात पे इस घर में इतनी परेशानी? और जीजा जी का क्या कहना है इस बारे में?
1: वो तो पूरी तरह से मेरा साथ दे रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है लड़का हो या लड़की। लेकिन मम्मी जी ने मेरा हाल बुरा कर दिया है, मुझे सोने नहीं देती, खाने नहीं देती, बैठने नहीं देती। मैं परेशान हो गई हूँ रोज रोज की लड़ाई से।
0: अरे तो अरुण ने उन्हें समझाया नहीं क्या?
1: वो समझा चुके हैं पहले से, लेकिन वो किसी की बात सुनने के लिए राजी तक नहीं है। आप तो जानते ही हो, ये बुजुर्ग लोग किसी की बात सुनते कहाँ हैं।
0: अच्छा नेहा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी सास से बात करती हूँ। एक बार तो उन्हें समझाना ही पड़ेगा। अरे लिंग जांच अपने आप में अपराध है, हम ये अपराध तो नहीं होने दे सकते ना?
1: हाँ दीदी बिल्कुल, मैं तो इस बच्चे के लिए तैयार भी नहीं थी, इनके कहने से मैंने ये देखा है। लेकिन अब लिंग जांच की बात, ये कहाँ तक सही है?
0: अरे नेहा तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी सास से बात करते हैं, क्योंकि बात करना इस वक्त बहुत जरूरी है।
2: लो आ गई अब दोनों।
0: अरे माँ जी, आप इतनी गुस्से में क्यों हैं? आखिर हुआ क्या है?
2: क्यों, तुम्हारी बहन ने नहीं बताया?
0: उसने तो बता दिया है, पर अब आपसे जानना चाहती हूँ, आप इतनी गुस्से में क्यों हैं?
2: देखो आशा, मैंने इनको भी पहले बता के रखा है और तुम्हें भी बता रही थी कि मुझे इस बार लड़का ही चाहिए।
0: तो माँ जी, अगर आपको लड़का चाहिए, इसमें मेरी बहन क्या कर सकती है?
2: बस बस, अब तुम भी मुझे समझाना बंद करो।
0: देखिए माँ जी, ये मैं नेहा से सुन चुकी हूँ कि आप लिंग जांच करवाना चाहती हैं उसकी, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बता दूँ, आप खुशी से कर सकती हैं, लेकिन उसके बाद जेल जाने के लिए भी बिल्कुल तैयार रहिए आप।
2: अरे अरे जेल?
0: जी हाँ जेल, और सिर्फ आप अकेली नहीं जाएंगी, आपके बेटा भी जाएंगे, और वहाँ पर बैठ के आप दोनों चक्की पीसने वाले हैं, ये बात याद रखिएगा।
2: अरे अब ऐसा भी कौन सा अपराध कर दिया मैंने जो अब जेल जाना पड़े?
0: अपराध तो आप कर रही हैं, लिंग जांच करवाना बहुत बड़ा अपराध है। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा ना हो तो किसी और से पूछ लीजिए, लेकिन अगर आप लिंग जांच करवाएंगी तो जेल जाना तो पक्का है।
2: अरुण देख बेटा, ये आशा कह कह रही है।
3: अरे माँ, आशा बिल्कुल ठीक कह रही है, आशा की बात मान लेते हैं, नहीं तो हम दोनों को जेल में जाकर चक्की पीसने पड़ेगी।
0: जी हाँ माँ जी, सोच लीजिए, अभी भी वक्त है आपके पास, अगर आपने लिंग जांच करवाई तो अब रिपोर्ट मैं करूँगी।
3: अरे माँ सोच लो, जेल जाना है या लिंग जांच करवाना है?
2: अरे नहीं नहीं, दोनों में से कुछ भी नहीं करवाना, मुझे बस माफ करो तुम।
0: ठीक है माँ जी, बहुत अच्छी बात है। तो नेहा, अब तुम्हारे बेबी शावर की तैयारियाँ करें?
4: हाँ हाँ जरूर।

0: आज के बदलते युग में लड़कियां किसी भी मामलों में लड़कों से कम नहीं है, परंतु समाज में आज भी कई ऐसे लोग हैं जो बेटे की चाहत में बेटियों को फूटी आंख भी देखना पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि बेटी होने के लिए औरत को प्रताड़ित भी किया जाता है, जबकि इसका सीधा सीधा संबंध पुरुष से होता है। आमतौर पर भारतीय परिवारों में बेटा होने पर जो जश्न मनाया जाता है या बेटी होने पर बहुत ही कम देखने को मिलता है। हम तो कहते हैं भाई, बेटा हो या बेटी, दोनों ही परिवार के जरूरी अंग है। बस बच्चा स्वस्थ और हिष्ट पुष्ट होना चाहिए, दोनों के ही बिना परिवार अधूरा है। दोनों की किलकारियां एक सी हैं, प्यार दोनों के ही साथ एक सा है, फिर दिलों में सिर्फ बेटे की चाह क्यों, बेटे की चाहत क्यों नहीं, है ना? सोचने वाली बात।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, जिनमें एक बच्ची की फरियाद दर्शाई गई है। आइए सुनाती हूँ। मुझे पुरुष के बराबर हक दिलाने की बात जाने चल रही है कब से, पर एक बात मैं कहना चाहती हूँ आप सबसे। रात के अंधेरे में भी चल सकूंगी जब मैं बेखौफ, सम्मानता तो तभी होगी जब नहीं सताएगा मुझे कोई खौफ। लड़की हो ये कहकर नहीं किया जाएगा कोई भेदभाव, भाई के इच्छाओं के आगे जबरन नहीं स्वीकारना होगा मुझे कोई अभाव। सिर्फ कानून ही नहीं दिला सकता मुझे सम्मानता का अधिकार, इसके लिए जरूरी है संकीर्ण मानसिकता का बहिष्कार, इसके लिए जरूरी है संकीर्ण मानसिकता का बहिष्कार।
0: अक्सर बात होती है कि बदलाव हो रहा है, लेकिन जब एक बच्ची महिला अपने अस्तित्व के लिए आवाज उठाती है तो समाज की कड़वी सच्चाई सामने आती है कि बदलाव सिर्फ एक साथ काम करना या कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना नहीं है, बल्कि मानसिकता में बदलाव होना असली विकास है। उम्मीद है कि इस कार्यक्रम से हम सबको कुछ न कुछ सीख मिली होगी और आने वाले समय में हम सब इस बदलाव का हिस्सा जरूर बनेंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सब श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पर आधारित हिंसा को नो कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला रेडियो गुंजन 91.2

कार्यशाला का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा स्मार्ट के सौजन्य से विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं और हमारे रेडियो स्टेशन द्वारा जो बनाए गए हैं विशेष कार्यक्रम दूसरे स्टेशन भी समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: अरे डब्बा ले आ। बेटा जल्दी आ, स्कूल को लेट हो रहा है।
2: आई पापा। क्या पापा जगह जगह थूकते रहते हो?
1: वो
2: मैं अपने नए नए दोस्त भी बनाऊंगी। पापा
0: क्या हुआ बेटिया?
3: डॉक्टर साहब,
4: आपकी बेटी को टीबी है और ये आपके ही देन है।
5: मैंने ऐसा क्या कर दिया?
2: पापा आज से आप एक प्रॉमिस करो कि आप थूकोगे नहीं।
3: वादा करता हूँ बेटिया, अब ऐसे कभी नहीं थूकूंगा, प्रॉमिस।
4: पब्लिक प्लेसेस पर थूकना बंद कीजिए, अपनी बुरी आदतें बदलकर एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण कीजिए।
6: बेटर लेट देन नेवर। तो देर भले हो गई हो लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए।
7: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं उरन विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 एफएम। सुनो शारदा
1: 90.8 एफएम। हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
1: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज कैरी ऑन।
2: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स में जीरो लापरवाही। टीबी की जांच में देरी ना करें, बलगम की सही जांच कराएं, टीबी की दवाइयों के कोर्स को नियमित रूप से लें, नहीं तो इलाज मुश्किल हो जाएगा।
1: तो मतलब इस क्लास का सार है लापरवाही करना टीबी से सिर्फ आधी लड़ाई जीतना।
2: यस सर, बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज 26 सितंबर है और आज के दिन दुनिया भर में मनाया जाता है विश्व गर्भ निरोधक दिवस। और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य गर्भ निरोधक विकल्पों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, अनचाहे गर्भधारण को रोकना, साथ ही महिलाओं और युवाओं को अपने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है, ताकि वे सोच समझकर सही निर्णय ले सकें। साथियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अकॉर्डिंग दुनिया भर में लाखों महिलाएं आज भी आधुनिक और सुरक्षित गर्भ निरोधक साधनों से वंचित हैं, जिसके कारण अनियोजित गर्भधारण के मामले बढ़ जाते हैं। तो साथियों, इस विश्व गर्भ निरोधक दिवस के अवसर पर हमने तुगलपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की MOIC डॉक्टर ऋषिका जी से बात की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा परिवार नियोजन के बारे में, आइए जानते हैं।
1: फैमिली प्लानिंग हमारे देश में, जहाँ आपकी सबसे ज्यादा आबादी है पूरे वर्ल्ड में, तो बहुत ही जरूरी है और गवर्नमेंट बहुत इसके लिए मेथड्स ले रही है, लेकिन इतने सारे कैंपेन शुरू कर रखे हैं, दो बच्चे ही अच्छे और इस तरह के, वो तो करती है गवर्नमेंट। पर इसके साथ साथ हमारे PHC पे एक तो कॉन्डम्स मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप कभी भी ले जा सकते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स भी मिलते हैं, लाइक निक्षे वगैरह जो मिलता है लेके आपको अगर टेस्ट करना हो प्रेगनेंसी का। इसके साथ साथ माला एन मिलती हैं टैबलेट्स, कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स होती हैं, और सहेली वगैरह भी मिलती हैं। प्लस इसके साथ साथ इंजेक्शन भी लगते हैं, हर 3 महीने पे लगते हैं वो अंतरा के इंजेक्शंस। तो ये सब फैसिलिटीज़ भी हमारे यहाँ हैं। जो हमारे यहाँ महिला आती है, पहले तो हम उनकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं कि उनके कितने बच्चे हैं घर में, कितना क्या है, और पहले सबसे पहले हम उनको स्पेस्ड प्रेगनेंसी के लिए एडवाइस करते हैं कि हर बच्चे में एटलीस्ट 3 साल का गैप होना चाहिए। हमारे यहाँ एक्चुअली यही होता है कि ज़्यादातर 1-1 साल का गैप होता है। इससे क्या होता है, मदर की हेल्थ पर बहुत फ़र्क पड़ता है और अल्टीमेटली बच्चे की हेल्थ पर भी फ़र्क पड़ता है। सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ पे भी उनके बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि घर में बहुत छोटे बच्चे अगर 2-3 हों तो बहुत दिक्कतें होती हैं। तो उन्हें तो हम पहले ये एडवाइस करते हैं कि अगर आपने अभी बच्चा किया है तो एटलीस्ट 3 साल का गैप रखिए, ताकि आपका स्वास्थ्य थोड़ा रिकवर हो सके। उसके साथ साथ अगर उनके 2 बच्चे से ज़्यादा हैं तो हम उनको यही बोलते हैं कि हमारे यहाँ उनको हम काउंसिल करते हैं कि हमारे यहाँ ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, आप प्लीज़ आइए और सबको इस सब का लाभ उठाइए। और हम उनको बताते ही हैं, मतलब आजकल के ज़माने में जहाँ पे इतनी महंगाई है और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उनसे थोड़ा बात करते हैं, उनके पर्सनल लेवल पे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझाते हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर ऋषिका जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने आज रेडियो के माध्यम से हमारे श्रोताओं तक, खास करके जो समुदाय के लोग हैं उन तक पहुँचाई है हमसे बात करने के लिए और जानकारी देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: शिशु के 6 महीने के होने के बाद
2: ठान लो ये बात,
1: 5 खाद्य समूहों का मेल
2: कर देगा सभी बीमारियों को फेल।
1: जो ना खिलाया बच्चे को पौष्टिक आहार,
2: बच्चा हो सकता है बीमार।
1: शिशु को 2 से 3 चम्मच मसला हुआ खाना खिलाएं।
2: शारीरिक और मानसिक रूप से अपने बच्चे को स्वस्थ बनाएं।
3: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
4: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरुण शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे, यानी कि ये पांच जूस। वो कौन कौन से पांच जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए पांच हेल्दी जूस जरूर पिएं। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन, मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में। तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। अब इसे छान कर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरु शारदा 90.8 FM।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का आज के उमंग कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, तो आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह आज के सुविचार से, जो हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने। आपने लिखा है,
2: कुछ चीजें निकट आने पर बिना मांगे ही मिल जाती हैं, जैसे अग्नि की गर्माहट, बर्फ की शीतलता, फूलों की सुगंध। इसलिए ईश्वर से कुछ भी मत मांगिए,
3: बस निकटता बढ़ाइए। सब कुछ जो आपके लिए अच्छा है बिना मांगे ही आपको मिलने लगेगा।
2: जी, इस सुंदर विचार के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सुनते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। हमारा पहला प्रश्न था,
3: श्रोताओ हमारा पहला प्रश्न था, हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा?
2: श्रोताओ, इसका सही उत्तर है, भारत वर्ष से आशय भरत के देश से है। भरत वो नाम है जो सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लिखित हुआ था। वहाँ इसका अभिप्राय लोगों के एक समूह वैदिक समूह से है। बाद के साहित्य में भरत नाम विभिन्न महाराजाओं के लिए भरत नाम उल्लिखित हुआ। भरत नाम से कई राजा हुए, इसी नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा।
3: श्रोताओ हमारा दूसरा प्रश्न था, इमोजी की खोज किसने की थी और इस शब्द का यानी इमोजी शब्द का अर्थ क्या है?
2: तो इसका सही उत्तर है साथियों, इमोजी की खोज की थी शिगेटाका कुरिता ने, जो कि एक जापानी डिजाइनर हैं। जापानी भाषा में ई से तात्पर्य है चित्रात्मक अक्षर और मोजी से अभिप्राय है चरित्र। इस तरह इमोजी का मतलब हुआ चित्रात्मक अक्षर और चरित्र।
3: जी, चित्रात्मक अक्षर और चरित्र। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, एट चिन्ह का उपयोग ईमेल पर सबसे पहले किसने और कब किया?
2: तो इसका भी सही उत्तर जान लेते हैं साथियों, एट चिन्ह का उपयोग सबसे पहले अमेरिका के कंप्यूटर इंजीनियर रे टॉमिलसन ने सन 1971 में दुनिया का पहला ईमेल भेजते समय किया।
3: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, गूगल का शाब्दिक अर्थ क्या है?
2: गूगल एक गणितीय शब्द है जिसका अर्थ है एक अंक के बाद 100 शून्य।
3: साथियों और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था?
2: तो इसका सही उत्तर है साथियों, इंटरनेट का आविष्कार किया था दो अमेरिकी इंजीनियर विंटन सर्फ और रॉबर्ट काहन ने।
3: जी, और अब सुनिए हमारा आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान का नाम बताइए। आप हमें हमारे ईमेल के पते पर भी संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
3: श्रोताओं हमें आपके संदेश और उत्तरों का इंतजार रहेगा। तो अब प्रस्तुत है श्रोता संवाद। श्रोता संवाद के 5वें संस्करण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि श्रोता संवाद के पिछले 4 संस्करणों में आप हमारे साथ निरंतर बने रहे। आज एक बार फिर से श्रोता संवाद में आप सभी श्रोताओं के साथ संवाद करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर राजेंद्र पाल, जो CIET NCERT के मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष हैं। तो प्रोफेसर पाल, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे श्रोताओं की ओर से।
4: धन्यवाद अजीत जी, सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार और धन्यवाद कि आप हमारे श्रोता संवाद कार्यक्रम को सुनते हैं। आशा है इस कार्यक्रम में दी जा रही जानकारियों से आप अवश्य लाभ उठा रहे होंगे।
3: तो डॉक्टर साहब, पिछले श्रोता संवाद के प्रत्युत्तर में हमें श्रोताओं के बहुत सारे पत्र ईमेल के द्वारा मिले हैं, तो क्यों ना पहले सुन लें कि क्या लिखा है हमारे श्रोताओं ने।
4: जी बिल्कुल, हम उनकी सुनेंगे तभी तो हमारे श्रोता हमारी सुनेंगे।
3: जी बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं श्रोताओं के पत्र जो हमें श्रोता संवाद के 4th अंक के प्रत्युत्तर में मिले हैं।
4: जी,
3: तो डॉक्टर साहब पहला पत्र हमें मिला है योगेश ठाकुर जी का, करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से। लिखते हैं, नमस्कार प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी और अजीत जी, उमंग कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोता संवाद का 4th अंक बहुत ही ज्ञानवर्धक था। इस कार्यक्रम में PME विद्या और दीक्षा पोर्टल के बारे में जो जानकारी दी गई थी वह जानकारी अन्य किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलती। आपका कार्यक्रम ऐसी ऐसी जानकारियों का भंडार है जिनका मिलना अन्य माध्यमों से असंभव सा लगता है। आपके कार्यक्रम में दीक्षा पोर्टल के बारे में जानकारी बड़े ही विस्तार पूर्वक दी गई, जो बहुत अच्छी थी। मुझे दीक्षा पोर्टल के बारे में पहले से ही जानकारी थी और इस जानकारी का श्रेय भी उमंग कार्यक्रम को ही जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
4: धन्यवाद योगेश जी, आपका पत्र पाकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। इसी प्रकार पत्र लिखते रहिए। आपसे निवेदन है, कृपया हमें बताएं कि श्रोता संवाद में आप शिक्षा से जुड़े और किन किन विषयों पर हमारी वार्ता सुनना पसंद करेंगे।
3: जी,
4: हमें आपके संदेश का इंतजार रहेगा।
3: जी डॉक्टर साहब, अगला पत्र हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। आप लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के अंतर्गत प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी से अजीत जी की बातचीत बहुत अच्छी लगी। पीएम ई विद्या के अंतर्गत दीक्षा के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त हुई। हम भी इस ऐप को अपने मोबाइल पर डाउनलोड करेंगे। यह ऐप विद्यार्थियों के साथ साथ सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दीक्षा ऐप पर महत्वपूर्ण जानकारी उमंग कार्यक्रम में सुनवाने के लिए प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी एवं अजीत जी का हम दिल से शुक्रिया प्रकट करते हैं। शिक्षाप्रद, मनोरंजक एवं जानकारियों से भरपूर उमंग कार्यक्रम सुनने के लिए हम उन श्रोता साथियों को भी प्रेरित करेंगे जो अभी तक इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को नहीं सुन पाए हैं।
4: सभी श्रोता बंधुओं को धन्यवाद, सभी अरोड़ा बंधुओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। हमारी आपसे अपेक्षा है कि कृपया श्रोता संवाद और उमंग कार्यक्रम सुनने के लिए अपने अन्य मित्रों को इसी तरह प्रोत्साहित करते रहें।
3: जी बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। डॉक्टर साहब, अगला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से। संदेश भेजने वाले हैं दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार धाकसे जी। आपने लिखा है, हमें दिनांक 5 मई 2025 दिन सोमवार का कार्यक्रम श्रोता संवाद बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर पाल द्वारा दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगी। इस वार्ता से पता चला कि शिक्षा के क्षेत्र में कितनी लाभकारी योजनाएं चल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद
4: संदेश के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता संवाद में हम शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा मंत्रालय की नई नई पहलों या प्रयासों के बारे में आप सबको सूचना देते हैं। हमारा आग्रह है कि आप इन पहलों की सूचना यथासंभव दूसरों को भी दें। यदि आप शिक्षक हैं तो आप स्थानीय विद्यालयों से भी संपर्क कर उन्हें भी इन पहलों की जानकारी दे सकते हैं। हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते रहें।
3: अगला पत्र हमें मिला है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से। रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार जयजान, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल जी का। आप लिखते हैं, उमंग कार्यक्रमों से काफी दिनों से हम जुड़े हुए हैं और भिन्न भिन्न आकाशवाणी केंद्रों से उमंग कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है ये कार्यक्रम जो जानकारी से भरा हुआ होता है। 5 मई का कार्यक्रम श्रोता संवाद हमने उमंग के अंतर्गत सुना। जानकारी से भरा यह कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। हमें प्रोफेसर पाल जी से मिली जानकारी बहुत अच्छी लगी। उमंग कार्यक्रम में जो सुनने वाले रेडियो श्रोता हैं उनको भी फोन पर बातचीत करके हमने कार्यक्रम सुनवाया। उमंग की पूरी टीम को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
4: अरे वाह, आपने तो रेडियो को टेलीफोन से भी जोड़ दिया है। इसके लिए आपको साधुवाद।
3: जी,
4: हाँ। सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप उमंग कार्यक्रम को भिन्न भिन्न आकाशवाणी केंद्रों से भी सुनते हैं।
3: जी,
4: हमारे और भी कई श्रोता हैं जो एक ही दिन में अलग अलग प्रसारण केंद्रों से उमंग कार्यक्रम सुनते हैं। ये दर्शाता है कि उमंग कार्यक्रम सचमुच लोकप्रिय है। आपसे आग्रह है कि अपने परिजनों और मित्रों को भी उमंग कार्यक्रम सुनने के लिए प्रेरित करते रहें।
3: जी डॉक्टर साहब, अगला पत्र हमें मिला है आर्यनगर कोह का, भिलाई, छत्तीसगढ़ से। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का। आपने संदेश भेजते हुए कहा है, सचमुच में ये कार्यक्रम बहुत ही रोचक, ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और जानकारी से भरा हुआ होता है। इसके बारे में समय समय पर हम अपनी प्रतिक्रियाओं से भी आपको अवगत कराते रहते हैं और भविष्य में भी इसी प्रकार से कराते रहेंगे। 5 मई का कार्यक्रम उमंग हमने सुना। जानकारी से भरा ये कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगा। प्रोफेसर पाल द्वारा दी गई जानकारी भी हमें बहुत अच्छी लगी।
4: धन्यवाद सभी संदेश भेजने वालों को। हमारा आभार। आप सबसे अपेक्षा है कि इसी तरह से अपना संदेश भेजते रहें और जरूर बताएं कि हमसे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं।
3: जी, आप सबका बहुत बहुत आभार श्रोताओं पत्रों और प्रतिक्रियाओं के लिए। हमारी आपसे अपेक्षा है कि श्रोता संवाद कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिक्रिया अधिक से अधिक दें। तो डॉक्टर साहब, शुरू करते हैं आज की बातचीत।
4: बिल्कुल,
3: पिछले दिनों हमने चर्चा की थी दीक्षा पोर्टल की, जो पीएम ई विद्या के 6 तत्वों में से एक प्रमुख तत्व है। हमारे श्रोता अब ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आज की हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा।
4: तो हमारी आज की चर्चा का विषय होगा स्वयं।
3: जी,
4: ये भी पीएम विद्या के तत्वों में से एक है।
3: लेकिन इससे पहले कि हम स्वयं पर चर्चा करें, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि एक बार फिर से हम क्यों ना अपने श्रोताओं को बता दें कि पीएम विद्या क्या है।
4: पीएम विद्या शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल है जो डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देती है।
3: जी,
4: यह विशेष रूप से उन छात्रों की मदद करती है जिनकी शैक्षिक संसाधनों तक सीधी पहुंच नहीं है।
3: जी, तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं आज स्वयं की। स्वयं से क्या अभिप्राय है, दूसरे शब्दों में स्वयं क्या है?
4: जी, स्वयं की अगर वर्तनी देखी जाए तो यह हुई SWAYAM।
3: जी, SWAYAM,
4: जिसका पूरा अर्थ है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स।
3: जी,
4: यह भारत सरकार की एक शैक्षिक डिजिटल पहल है जिसका शुभारंभ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया था।
3: जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो यदि स्वयं को हम हिंदी में कहना चाहें तो मुझे लगता है इसका अर्थ बनेगा युवा महत्वाकांक्षी मस्तिष्क के लिए सक्रिय शिक्षण हेतु वेब द्वारा अध्ययन।
4: जी, होगा जी, यही अर्थ बनेगा। वेब द्वारा अध्ययन करने का अर्थ है वेब पोर्टल के माध्यम से अध्ययन करना।
3: जी, बहुत अच्छा। तो हम आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि इस पहल या इनिशिएटिव यानी स्वयं का उद्देश्य क्या है।
4: जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तीन मुख्य सिद्धांत हैं, पहुंच यानी एक्सेस, समानता यानी इक्विटी
3: जी,
4: और गुणवत्ता यानी क्वालिटी।
3: जी,
4: पहुंच से तात्पर्य है सुनिश्चित करना कि पढ़ने की इच्छा रखने वाले हर विद्यार्थी तक शिक्षण सामग्री पहुंच सके।
3: जी, डॉक्टर साहब, आपने बताया राष्ट्रीय शिक्षा नीति का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है समानता, इसके बारे में भी कुछ कहें।
4: जी, समानता का अर्थ है भारत के किसी भी शिक्षार्थी तक शैक्षिक सामग्री बिना भेदभाव के पहुंच सके, यानी शैक्षिक सामग्री प्राप्त करने के सबके पास समान अवसर हों। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का तीसरा प्रमुख सिद्धांत है गुणवत्ता।
3: जी डॉक्टर साहब, गुणवत्ता का आशय तो स्पष्ट है, विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री प्रदान करना।
4: जी हाँ, स्वयं का प्रमुख उद्देश्य ऐसे लोगों तक शैक्षिक सामग्री पहुंचाना है जो भौगोलिक, आर्थिक या अन्य किन्हीं और परिस्थितियों के कारण शैक्षिक डिजिटल क्रांति से वंचित या अछूते रह गए हैं।
3: जी, तो डॉक्टर साहब, जैसे दीक्षा एक पोर्टल है, क्या वैसे ही स्वयं भी एक वेब पोर्टल है?
4: जी जी, दीक्षा की तरह ही स्वयं भी एक ऑनलाइन लर्निंग वेब पोर्टल है। यह कक्षा 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यह सामग्री किसी भी समय, किसी भी स्थान पर और किसी के लिए भी उपलब्ध है।
3: वाह, क्या बात है, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर और किसी के लिए भी उपलब्ध है। ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। हमारे श्रोता अब ये जानना चाहेंगे कि स्वयं पोर्टल पर शैक्षिक

0: शैक्षिक सामग्री कौन प्रदान करता है?
1: जी अजीत जी, स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध सामग्री देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा विकसित की जाती है। यह सामग्री परस्पर संवादात्मक या इंटरेक्टिव है और सभी शिक्षार्थियों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है।
0: जी, तो डॉक्टर साहब, पिछली बार हमने दीक्षा पोर्टल पर NCERT की भूमिका और योगदान की भी चर्चा की थी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि स्वयं में NCERT की क्या भूमिका है।
1: मैं सभी श्रोताओं को विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि NCERT कक्षा 9 से 12 तक के स्वयं पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम विकसित, प्रकाशित और प्रसारित कर रही है। NCERT इन कक्षाओं के लिए 11 विषयों में 28 पाठ्यक्रम प्रस्तुत करती है।
0: 11 विषयों में 28 पाठ्यक्रम, तो डॉक्टर साहब ये पाठ्यक्रम कब उपलब्ध होते हैं?
1: यह पाठ्यक्रम वैसे तो हमेशा उपलब्ध होते हैं, परंतु इनमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 2 चक्र होते हैं।
0: जी,
1: पहला चक्र यानी कि सत्र 1 अप्रैल से सितंबर तक का है और दूसरा सेशन अक्टूबर से मार्च तक का होता है।
0: जी,
1: मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि विगत वर्ष यानी कि पिछले वर्ष सितंबर 2024 तक उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार लगभग 5,00,000 शिक्षार्थी स्वयं पोर्टल से लाभान्वित हो चुके हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, अभी हमने जाना दीक्षा के पाठ्यक्रमों के बारे में, लेकिन अब हम जानना चाहेंगे इसकी सामग्री के बारे में। तो हमारा प्रश्न होगा कि स्वयं पोर्टल में किस प्रकार की सामग्री उपलब्ध होती है?
1: जैसा कि यह शिक्षा से संबंधित पोर्टल है, इस पर शैक्षिक ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, सिमुलेशन और वर्चुअल लैब जैसी समृद्ध शैक्षिक सामग्री उपलब्ध है।
0: जी,
1: साथ ही यदि कोई शिक्षार्थी पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न पूछना चाहे तो उन्हें उनके प्रश्नों का त्वरित समाधान प्रदान किया जाता है। पूछे गए प्रश्नों पर स्वयं पोर्टल के चर्चा मंच पर भी विस्तार से चर्चा की जाती है।
0: जी डॉक्टर साहब, स्वयं पर जो पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, क्या उनकी कोई विशेष संरचना होती है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, स्वयं के हर पाठ्यक्रम को 4 हिस्सों में तैयार किया जाता है।
0: जी,
1: जिन्हें 4 क्वाड्रेंट्स कहा जाता है।
0: जी, 4 क्वाड्रेंट्स।
1: हाँ, वीडियो लेक्चर इसका पहला क्वाड्रेंट है। इस क्वाड्रेंट में विशेष विषय विशेषज्ञों द्वारा रिकॉर्ड किए गए ऑडियो विजुअल कार्यक्रम होते हैं। यह शिक्षार्थियों को कक्षा जैसा अनुभव प्रदान करते हैं और वो भी कहीं भी और कभी भी।
0: जी, बड़ी अच्छी बात, वो भी कहीं भी और कभी भी। इसके दूसरे क्वाड्रेंट के बारे में कुछ बताएं।
1: दूसरा क्वाड्रेंट पाठ्य सामग्री यानी रीडिंग मटेरियल है। इस खंड में संपूर्ण पाठ्य सामग्री, प्रस्तुतियां, PDF नोट्स और अतिरिक्त संदर्भ होते हैं।
0: जी,
1: यह विद्यार्थियों के स्व अध्ययन को सशक्त बनाते हैं।
0: जी, और इसका तीसरा क्वाड्रेंट?
1: तीसरा क्वाड्रेंट सेल्फ असेसमेंट यानी स्व मूल्यांकन होता है। इसमें विद्यार्थियों के लिए मल्टीपल चॉइस यानी बहुविकल्पी प्रश्न, पहेलियां, शंकाओं पर आधारित अभ्यास और अन्य मूल्यांकन गतिविधियां होती हैं, जिनसे वे अपने ज्ञान का मूल्यांकन कर सकते हैं।
0: जी, तो ये हुआ तीसरा क्वाड्रेंट। अब चौथे क्वाड्रेंट के बारे में भी कुछ बताएं।
1: चौथा क्वाड्रेंट चर्चा मंच और संवाद यानी डिस्कशन फोरम है।
0: जी,
1: यह खंड विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने, शिक्षकों से उत्तर पाने और अन्य शिक्षार्थियों के साथ संवाद स्थापित करने की सुविधा देता है। यह सहयोगात्मक यानी कोलैबोरेटिव लर्निंग को प्रोत्साहित करता है।
0: जी डॉक्टर साहब, बहुत ही स्पष्ट और प्रभावशाली विवरण दिया आपने। इससे यह पता चलता है कि स्वयं केवल पाठ्य सामग्री तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एक समग्र डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इन चारों हिस्सों से स्वयं एक समग्र और सहभागी डिजिटल शिक्षण मंच बन जाता है।
1: बिल्कुल अजीत जी, यही स्वयं की विशेषता है। यह एक तरफा शिक्षण नहीं, बल्कि सक्रिय, सहभागी और मूल्यांकन समर्थ शिक्षा है। इसके चारों क्वाड्रेंट मिलकर एक संपूर्ण डिजिटल कक्षा का निर्माण करते हैं।
0: जी, तो डॉक्टर साहब, इसका अर्थ ये है कि स्वयं पोर्टल पर स्व आकलन भी संभव है, जैसा हमने अभी अभी सुना। यानी क्या प्रतिभागी इस पोर्टल पर अपने अर्जित ज्ञान का स्वयं

0: आकलन कर सकता है?
1: जी बिल्कुल, यही तो इस पोर्टल की सबसे बड़ी विशेषता है। स्वयं पोर्टल का नाम ही स्वयं है, यानी शिक्षार्थी स्वयं अध्ययन कर सकता है और स्वयं अपना मूल्यांकन भी कर सकता है।
0: जी, मेरे मन में एक और प्रश्न आ रहा है जो मैं श्रोताओं की ओर से आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। मेरा प्रश्न है, स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध पाठ्यक्रम में कौन भाग ले सकता है?
1: इस पाठ्यक्रम में स्कूली छात्र, अभिभावक, सेवा पूर्व और सेवारत शिक्षक तथा भारत के केंद्रीय और राज्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थी भी अपनी तैयारी के लिए इसमें भाग ले सकते हैं।
0: बहुत ही सुंदर, स्वयं पोर्टल सच में बहुत ही उपयोगी है। भेंट वार्ता के अंत में मेरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न श्रोताओं की ओर से, तो प्रश्न है कि स्वयं के पाठ्यक्रमों में यदि कोई भाग लेना चाहे तो कैसे भाग ले?
1: वैसे तो श्रोताओं के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण ही होते हैं।
0: जी,
1: तो इसमें भाग लेने के लिए शिक्षार्थियों को बहुत ही सामान्य और सुगम चरणों से गुजरना होगा।
0: जी,
1: पहला चरण CIET NCERT पोर्टल पर www.cit.nic.in या www.ncert.nic.in पर जाएं, सर्च विकल्प के द्वारा पाठ्यक्रम तक पहुंचें।
0: जी, और दूसरा चरण क्या है?
1: दूसरा चरण है कि आप www.swayam.gov.in पर अपना पंजीकरण कराएं और विषय वस्तु का अध्ययन करें और उससे जुड़ी हुई सभी गतिविधियां ऑनलाइन पूर्ण करें और फिर अंतिम आकलन में भाग लें। सफल होने पर प्रमाण पत्र भी प्राप्त करें।
0: जी, तो क्या पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए कुछ न्यूनतम अंक अर्जित करने होंगे?
1: जी हाँ, प्रारंभिक आकलन में जिन्होंने 50% अंक प्राप्त किए और योगात्मक यानी समेटिव आकलन में 60% या अधिक अंक प्राप्त किए
0: जी,
1: उन्हें पाठ्यक्रम पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।
0: जी,
1: और जिन्होंने प्रारंभिक आकलन में 50% अंक नहीं पाए उन्हें पाठ्यक्रम प्रतिभागिता प्रमाण पत्र और जिन्होंने योगात्मक आकलन में 60% अंक प्राप्त नहीं किए उन्हें पाठ्यक्रम प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया जाता है।
0: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी उपयोगी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए।
1: सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या हम श्रोताओं को अपना कोई नया कार्यक्रम सुना रहे हैं?
0: जी हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो आइए सुनते हैं कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम नकली हीरे।

0: काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: कोई ना कोई वजह होगी, तभी तो ऐसा हो रहा है।
3: अच्छी बारी तो बहुत अच्छा है।
4: महाराज की जय।
1: आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
5: हाँ महाराज, महाराज बताइए।
1: हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर
5: हैं। हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
1: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
6: जी महाराज, पूछिए। क्या प्रश्न है आपका?
1: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
7: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।
0: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया।
1: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।
0: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया।
2: जी महाराज, बहुत
3: महाराज की जय हो।
6: महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो।
1: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद।
0: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा।
1: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे। क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
5: महाराज ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
1: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
5: इसमें संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़ कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़ कर थे।
1: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
5: धन्यवाद महाराज।
0: अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे।
5: भाई क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ?
7: मुझे भी नकली मिला। मुझे भी नकली हो सकता है
5: यार, क्या सबको नकली मिला? तुम भी नकली? तुम
7: कैसे हो सकता है? नकली हीरा तो सकता, नकली कैसे हो गया?
5: अरे मैंने तो कई लोगों से पता करवाया, सभी ने बोला कि नकली है।
7: महाराज
6: महाराज महाराज महाराज की जय। महाराज
8: की जय। महाराज की जय।
1: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
5: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज। यदि आप आज्ञा दे तो हम पूछ ले महाराज।
1: कहिए, मेरी आज्ञा है। आप सभी निसंकोच कहिए।
5: धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। महाराज हमने इन हीरो की जांच जौहरी से कराई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली है महाराज।
1: क्या? और कोई शंका?
5: जी जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है। बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
1: ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए। पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
8: महाराज की जय। महाराज की जय। महाराज की जय।
9: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
10: तो आशा है कि हमारे श्रोताओं को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले अंक में पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।
11: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
12: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
13: The world is here.

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि हम सब जानते हैं आज 26 सितंबर है और आज के दिन दुनिया भर में मनाया जाता है विश्व गर्भ निरोधक दिवस और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य गर्भ निरोधक विकल्पों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, अनचाहे गर्भधारण को रोकना, साथ ही महिलाओं और युवाओं को अपने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है ताकि वे सोच समझकर सही निर्णय ले सकें। साथियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अकॉर्डिंग दुनिया भर में लाखों महिलाएं आज भी आधुनिक और सुरक्षित गर्भ निरोधक साधनों से वंचित हैं, जिसके कारण अनियोजित गर्भधारण के मामले बढ़ जाते हैं। तो साथियों, इस विश्व गर्भ निरोधक दिवस के अवसर पर हमने तुगलपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की MOIC डॉक्टर ऋषिका जी से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा परिवार नियोजन के बारे में, आइए जानते हैं।
1: फैमिली प्लानिंग हमारे देश में जो आपकी सबसे ज्यादा आबादी है पूरे वर्ल्ड में, तो बहुत ही जरूरी है और गवर्नमेंट बहुत इसके लिए मेथड्स ले रही है, लेकिन इतने सारे कैंपेन शुरू कर रखे हैं, दो बच्चे ही अच्छे और इस तरह के, वो तो करती है गवर्नमेंट। पर इसके साथ साथ हमारे PHC पे एक तो कॉन्डम्स मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप कभी भी ले जा सकते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स भी मिलते हैं, लाइक निक्षे वगैरह जो मिलता है लेके आपको अगर टेस्ट करना हो प्रेगनेंसी का। इसके साथ साथ माला एन मिलती हैं टैबलेट्स, कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स होती हैं और सहेली वगैरह भी मिलती हैं। प्लस इसके साथ साथ इंजेक्शन भी लगते हैं, हर 3 महीने पे लगते हैं वो अंतरा के इंजेक्शंस। तो ये सब फैसिलिटीज भी हमारे यहाँ हैं। जो हमारे यहाँ महिला आती है, पहले तो हम उनकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं कि उनके कितने बच्चे हैं घर में, कितना क्या है, और पहले सबसे पहले हम उनको स्पेस्ड प्रेगनेंसी के लिए एडवाइस करते हैं कि हर बच्चे में एटलीस्ट 3 साल का गैप होना चाहिए। हमारे यहाँ एक्चुअली यही होता है कि ज्यादातर 1-1 साल का गैप होता है। इससे क्या होता है, मदर की हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है और अल्टीमेटली बच्चे की हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है। सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ पे भी उनके बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि घर में बहुत छोटे बच्चे अगर 2-3 हों तो बहुत दिक्कतें होती हैं। तो उन्हें तो हम पहले ये एडवाइस करते हैं कि अगर आपने अभी बच्चा किया है तो एटलीस्ट 3 साल का गैप रखिए ताकि आपका स्वास्थ्य थोड़ा रिकवर हो सके। उसके साथ साथ अगर उनके 2 बच्चे से ज़्यादा हैं तो हम उनको यही बोलते हैं कि हमारे यहाँ उनको हम काउंसिल करते हैं कि हमारे यहाँ ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, आप प्लीज़ आइए और सबको इस सब का लाभ उठाइए। और हम उनको बताते ही हैं, मतलब आजकल के ज़माने में जहाँ पे इतनी महंगाई है और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उनसे थोड़ा बात करते हैं, उनके पर्सनल लेवल पे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझाते हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर ऋषिका जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने आज रेडियो के माध्यम से हमारे श्रोताओं तक, खास करके जो समुदाय के लोग हैं उन तक पहुँचाई है हमसे बात करने के लिए और जानकारी देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: क्या हुआ बहू, इतनी खांसी?
1: माँ जी, मुझे टीबी है।
0: टीबी और छुपा कर रखा?
1: माँ जी, मुझे डर था कि कहीं आप मुझे वापस मायके न भेज दें।
0: जाना तो तुझे पड़ेगा, लेकिन मायके नहीं, डॉट सेंटर। टीबी कोई ऐसी बीमारी थोड़े ही है जो छुपाते फिरें। टीबी छूने, साथ खाना खाने या रहने से नहीं फैलती। टीबी मरीज को जरूरत है आपके प्यार की और डॉट्स के पूरे कोर्स की। टीबी से दूर रहें, टीबी के मरीज से नहीं। याद रखें, पूरा कोर्स, पक्का इलाज। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में। या यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये एक ऐसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वहीं एक मासूम बच्चे की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @ 90.8 FM।

धरती मेरी धरती लीजिए प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 26वीं कड़ी समुद्र का खजाना। श्रोताओं, पिछले भाग में आपने चक्रवातों के बारे में जाना कि चक्रवात क्या है, कैसे बनते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो लीजिए आगे सुनिए विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 26वीं कड़ी समुद्र का खजाना।

0: विवेक विवेक
1: ये सृष्टि और मानव दोनों कहाँ गए? इन दोनों काफी देर से भूख लगी का शोर मचा रहे थे
2: और अब खाना तैयार है तो इन दोनों का पता ही नहीं।
3: मम्मी शायद ये दोनों छत पर होंगे।
1: लगता है दोनों भाई बहन पतंग उड़ा रहे हैं।
2: विवेक जाओ उन्हें खाने के लिए बुला लो।
1: जल्दी जाओ भाई, मुझे भूख लगी हुई है।
4: मानव
1: तुम भी ना खाने से
2: सृष्टि, मैंने थोड़ी ना भेजा
4: है। मानव तुम भी ना, तैयार है, नीचे आ जाओ जल्दी।
5: अभी आ रही है ना,
4: लो आ रहे हैं।
2: लो हम आ गए पापा।
1: अरे बच्चों जल्दी आओ, खाना ठंडा हो रहा है।
5: अरे वाह, आज तो मम्मी ने मेथी के पराठे बनाए हैं, साथ में हलवा भी है मानव,
2: और नारियल की चटनी भी है।
1: बच्चों शुरू हो जाओ जल्दी से।
2: चलो
1: लो सृष्टि। अरे भाई तुम मुझे पास करो।
2: हाँ ये लो बेटा, तुम भी लो।
3: मम्मी चटनी का स्वाद अजीब सा क्यों लग रहा है?
5: मुझे लगता है कि मम्मी ना नमक डालना भूल गई।
1: हाँ बच्चों, नमक नहीं होने के कारण ही सचमुच खाना स्वादिष्ट नहीं लग रहा है।
2: मम्मी क्या नमक खत्म हो गया है?
3: सृष्टि हुआ नहीं तो जल्दी हो जाएगा। हा? तुम्हें पता ही होगा अपना मानव थाली में हमेशा अलग से नमक जरूर लेता है
2: और हमेशा फिर थाली में छोड़ भी देता है। हाँ घर में सबसे ज्यादा नमक मानव ही व्यर्थ करता है।
5: अरे भाई नमक जैसी सस्ती चीज के लिए आप मुझे बुरा भला क्यों कह रहे हो? पापा की सैलरी का सबसे कम हिस्सा इस नमक पर ही तो खर्च होता है।
2: अरे नमक के लिए तुम लोग मेरे प्यारे बेटे को क्यों परेशान करते हो?
3: मम्मी ये नमक ही तो था जिसने 1930 में भारत में ब्रिटिश सरकार की नाक में दम कर दिया था। इस नमक में बड़ी ताकत है।
5: वो कैसे भैया?
3: मानव सन 1930 में ही महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कर नमक कानून तोड़ा था।
2: भैया एक बात बताओ, गांधी जी जैसे महान व्यक्ति ने अपने आंदोलन के लिए नमक जैसी साधारण चीज क्यों चुनी?
6: बच्चों क्योंकि नमक का उपयोग हम सभी करते हैं और ब्रिटिश सरकार ने ये कानून बना रखा था कि नमक का व्यापार केवल सरकार करेगी, यानी आम आदमी को ये हक नहीं था कि वो नमक बना सके।
2: यानी नमक की सबको कीमत चुकानी पड़ती होगी और वो भी वो कीमत जो सरकार चाहे।
5: तब तो सबकी आमदनी का अच्छा खासा हिस्सा नमक खरीदने में ही जाता होगा।
1: और सिर्फ यही नहीं, नमक का मुद्दा ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर आजादी की लड़ाई में जन जन को जोड़ा जा सकता था।
5: पापा तो क्या गांधी जी इसमें सफल हुए?
6: बेटा सफल क्यों नहीं हुए, नमक के आंदोलन के बाद तो आजादी की लड़ाई ने जैसे आग पकड़ ली
2: और वो आग 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के साथ ही बुझी। क्यों पापा ठीक कहा ना?
1: बिल्कुल ठीक कहा सृष्टि। पर बच्चों नमक का दांडी यात्रा से ही नहीं बल्कि सैलरी शब्द से भी गहरा संबंध है।
5: पापा भला सैलरी शब्द का नमक से क्या लेना देना?
1: मानव सैलरी शब्द की उत्पत्ति ही लैटिन शब्द सेलेनियम से हुई है, इसका अर्थ नमक के रूप में भुगतान होता है। और बेटा और तो और रोम में तनख्वाह या पगार के रूप में नमक दिया जाता था।
5: अच्छा?
1: इसीलिए इसे सैलरी बोलते हैं। अंग्रेजी का शब्द सॉल्ट इसी शब्द से निकला है।
5: अच्छा इसका मतलब सर्विस यानी नौकरी करने वालों के लिए तो नमक का विशेष महत्व है।
2: सर्विस क्लास ही क्यों, अमीर हो या गरीब नमक तो सभी के लिए आवश्यक है।
1: बिल्कुल।
2: मम्मी बातें तो चलती रहेंगी लेकिन बिना नमक के चटनी नहीं खाई जाएगी।
6: लो बच्चों खाने के ऊपर से थोड़ा नमक डालो।
2: हाँ ये ठीक रहेगा।
3: लो मुझे भी देना।
2: ये लो भैया
5: ये ले।
3: हाँ मम्मी
7: अच्छा लग रहा है।
5: अब अच्छा है।
3: नमक डालने से तो चटनी में स्वाद आ गया।
5: लेकिन भैया ये नमक इतना सस्ता क्यों है?
2: मानव तेरा विचार क्या नमक को महंगा बनाने का है?
5: अरे नहीं दीदी, मेरा मतलब है कि इतना नमक आता कहाँ से है?
2: अरे बुद्धू इतना भी नहीं पता तुझे, नमक समुद्री जल से बनता है।
3: मानव इतना तो पता होना चाहिए था तुझे, समुद्र ही नमक का सबसे बड़ा स्रोत है।
5: पर पुराने समय में जहाँ लोग समुद्र के पास नहीं रहते थे उन लोगों को नमक कहाँ से मिलता था?
2: उन्हें नमक खरीदना पड़ता था, वो भी मुंह मांगी कीमत पर।
5: तब तो उन्हें अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा नमक पर ही खर्च करना पड़ता होगा।
2: अरे पापा ने अभी बताया तो रोम में तो वेतन का एक हिस्सा नमक के रूप में ही दिया जाता था।
1: बच्चों बच्चों बच्चों नमकीन बातें बहुत हुई, अब हलवा खाओ, हलवा हमें भी खिलाओ भाई।
6: अरे अरे अरे, स्वाद स्वाद में देखो ज्यादा ना हो जाए। मम्मा
3: लो ना पापा, आप लोग
5: सोचते खाए चले जा रहे हो। अरे पापा आज हमें घूमने भी तो जाना है ना।
1: अरे अरे जाएंगे सही, पहले हलवा तो खा ले हम। अरे तब तक तुम लोग ये तो तय करो कि
5: आज हमें घूमने भी तो जाना है ना।
1: अरे अरे जाएंगे सही, पहले हलवा तो खा ले हम। अरे तब तक तुम लोग ये तो तय करो कि जाना कहाँ है।
3: पापा समुद्र के नमक से मुझे याद आया, क्यों ना हम समुद्र का खजाना नामक प्रदर्शनी देखने चले।
2: भैया कहीं तुम महासागर विकास विभाग की चलती फिरती प्रदर्शनी की बात तो नहीं कर रहे।
3: उसी की तो बात कर रहा हूँ सृष्टि, इन दिनों ये प्रदर्शनी हमारे शहर में आई हुई है।
5: वाह पापा, तो आज चलते हैं समुद्र का खजाना देखने के लिए।
1: हाँ जरूर चलेंगे बच्चों, जरूर। बस मैं ये हलवा खा लूं, फिर थोड़ी सी एक प्यारी सी छोटी सी नींद ले लूं, उसके बाद चलते हैं। ठीक है
5: चलो, ठीक है
2: ओहो यहाँ तो बड़ी भीड़ है।
3: समुद्र का खजाना देखने लोग भी तो बड़ी संख्या में आए हैं।
6: यहाँ तो चार गैलरीज हैं। पहले किस में चले?
5: मम्मी पहले हम चलते हैं समुद्र तटीय क्षेत्र के संसाधनों की जानकारी लेने, ठीक है?
1: हाँ भाई, तट से होते हुए ही गहरे समुद्र में जाएंगे।
5: अरे देखो यहाँ तो नदी मुख, समुद्री झील, बालू के टीले और कच्छ यानी मैंग्रोव वनस्पति के बारे में अच्छी जानकारी दी गई है।
0: मानव समुद्र तटीय क्षेत्र से भारी मात्रा में रेत और बालू प्राप्त होती है और यहाँ कई महत्वपूर्ण खनिज भी होते हैं जैसे थोरियम, सिलिकॉन वगैरह वगैरह।
6: रेत और बालू तो सही, पर मैंग्रोव वनस्पतियाँ?
3: मैं बताता हूँ मम्मी, प्रकृति ने इन वनस्पतियों को खारे पानी में उगने की अद्भुत क्षमता प्रदान की है।
2: खारे पानी में उगने के अलावा मैंग्रोव के बीज में पेड़ पर ही अंकुरित होने का गुण भी पाया जाता है।
0: बच्चों प्रकृति की अनोखी व्यवस्थाएं हैं, यहाँ सभी को विकास के समान अवसर उपलब्ध हैं।
2: आगे देखते हैं और क्या क्या है समुद्र में।
3: आइए चलो,
5: भैया यहाँ ये सुनामी का चित्र क्यों दिया गया है?
3: मानव इतना भी नहीं पता कि मैंग्रोव वनस्पतियाँ सुनामी या समुद्री लहरों और चक्रवात के प्रभाव को कम कर देती हैं। तटीय क्षेत्रों के लिए ये वनस्पतियाँ प्राकृतिक दीवार का काम करती हैं।
5: तो इसका मतलब मैंग्रोव सुनामी के तट पर पहुँचने से पहले ही उसके वेग को कम कर

0: देती है। हाँ मानव, मैंग्रोव वनस्पतियाँ सुनामी जैसी आपदा से बचाने के साथ और भी अनेक कामों में उपयोगी हैं, जैसे ये जलाने के लिए और फर्नीचर निर्माण में भी उपयोगी हैं।
1: और मैंग्रोव वनों में अनेक वन्य जीव जंतु और पक्षी भी रहते हैं।
2: बच्चों, भारत के सुंदर वन मैंग्रोव क्षेत्र में बाघों की अच्छी खासी संख्या है।
0: इन वनों से तो दूर ही रहना मानव।
3: क्यों?
0: नहीं तो पता चले कि बहादुर मानव बाघ के सामने आने पर भीगी बिल्ली बन गया।
4: ये देखो
5: यहाँ समुद्री पानी से नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया चित्रों के माध्यम से बताई गई है। और ये देखो, पहले समुद्री जल के वाष्पन से इसके रवे या डल्ले बनते हैं।
4: अरे वाह, ये तो नमक के खेत लग रहे हैं। और ये नमक जैसे मिश्री की डली हो।
0: लेकिन ये मिश्री नहीं, नमक है।
1: और मानव, इन्हीं रवों को पीस कर तो नमक बनाया जाता है।
2: बच्चों, आजकल नमक बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा बड़े बड़े कारखानों में इन रवों को साफ करके तथा पीस कर बनाया जाता है।
5: नमक बनाने के साथ ही अब तो अधिकतर पैकिंग के दौरान ही इसमें आयोडीन भी मिला दिया जाता है।
4: आयोडीन?
0: मानव, आयोडीन हमारे स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक तत्व है। समुद्र की वनस्पतियाँ भी आयोडीन का एक मुख्य स्रोत है।
2: बच्चों आगे चलो, अभी बहुत कुछ देखना है।
0: हाँ, चलो चलो चलो चलो।
1: यहाँ तो समुद्र की लवणता के बारे में बताया गया।
0: मुझे पता है कि समुद्र की औसत लवणता 35 ग्राम प्रति लीटर होती है।
2: हाँ, वेरी गुड। अब बच्चों, सागर की लवणता में अकेले सोडियम क्लोराइड यानी नमक का योगदान ही करीब 80% है।
1: और जानते हो मानव, सोडियम क्लोराइड के अलावा समुद्र के पानी में कई और भी लवण होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि।
0: पापा, अब समुद्र के सजीव संसाधनों की प्रदर्शनी देख लेते हैं।
4: अरे वाह, ये देखो, ये रंग बिरंगी मछलियों के चित्र कितने सुंदर लग रहे हैं।
5: बेटा, समुद्र में मछलियों का संसार इन चित्रों से भी अधिक सुंदर है।
4: इनसे भी सुंदर है?
1: हाँ मानव, समुद्र में तो मछलियों की हजारों प्रजातियाँ रहती हैं।
2: और बच्चों, पता है ना, मछलियाँ प्रोटीन का भंडार होती हैं। पूरे संसार में अधिकतर लोगों की प्रोटीन की आवश्यकता समुद्री जीवों से ही पूरी होती है।
0: अच्छा ये बताओ मानव, धरती का विशाल काय जीव कौन सा है?
4: ब्लू व्हेल।
0: अरे वाह, तुझे तो पता है।
1: अरे सृष्टि, सामने व्हेल के बारे में जो जानकारी दी गई है, मानव ने उससे पढ़कर उत्तर दिया है तुम्हें।
0: तभी तो मैं कहूँ, हमारा बुद्धूराम समझदार कैसे हो गया।
4: अच्छा
0: पापा, मैंने क्या किया?
1: पापा आगे चलते हैं, अभी तो देखना है कि क्या क्या बाकी है समुद्र के खजाने में।
2: चलो।
5: बेटा, समुद्र को धरती का भंडार गृह भी
1: के खजाने में। चलो।
5: बेटा, समुद्र को धरती का भंडार गृह भी कहते हैं। यहाँ वायुमंडल से 50 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड समाई हुई है, जो सभी समुद्री पौधों को भोजन बनाने में मदद करती है।
4: अरे, ये समुद्र में जंगल कहाँ से आया?
0: मानव, ये जंगल नहीं, समुद्री जीव पोलिप या मूंगे की चट्टाने हैं।
2: इन्हें कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति कहा जाता है।
5: बच्चों, ये प्रवाल भित्ति समुद्री संसाधन में अति महत्वपूर्ण स्थान रखती है।
1: मानव, जानते हो, प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्रों में विभिन्न रंगों वाले मूंगे, सीपी और शंख तो मिलते ही है। साथ ही साथ प्रवाल भित्ति क्षेत्रों में जैव विविधता भी पर्याप्त होती है। उत्पादन क्षमता के आधार पर इनकी तुलना जमीन के वर्षा वनों से की जाती है।
2: हाँ बच्चों, केकड़े, मोलस्क, स्पंज और बहुत सुंदर सी मछलियों सहित प्रवाल भित्ति क्षेत्रों में लाखों समुद्री जीव जंतु निवास करते हैं।
5: और इस क्षेत्र से अनेक प्रकार की औषधियों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व भी मिलते हैं।
4: आज मुझे समझ में आया कि जमीन से अधिक जीव तो समुद्र में बसे हैं।
1: बिल्कुल ठीक समझे मानव तुम। समुद्र असंख्य जीवों का घर है, और ये तो तुम्हें मालूम ही होगा कि जीवन की शुरुआत समुद्र में ही हुई थी, यही जीवन फला फूला था।
2: और बच्चों, समुद्री क्षेत्र में मछली उद्योग, झींगा उद्योग और केकड़ा उद्योग से लाखों लोगों को रोजगार और भोजन भी मिल रहा है।
4: पापा, क्या आपको नहीं लगता कि अब हमको भी कुछ खा लेना चाहिए?
2: शुरू हो गया।
5: अरे हाँ, बच्चों को भूख लगाई होगी, अब क्यों ना हम बाहर ही कुछ खाएं?
4: हाँ।
2: वसुधा तुम भी।
0: लगता है मानव समुद्र का खजाना देखने नहीं बल्कि बाहर खाना खाने के लालच में आया।

0: चलो मानव, खाने के बाद अब हम प्रदर्शनी में समुद्र के निर्जीव खजाने की जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलो
1: चलो चलो चलते हैं।
2: अरे वाह, इस चित्र में तो समुद्र में कहीं पहाड़ तो कहीं गहरी खाई दिखाई गई है।
1: समुद्र में पहाड़?
3: हाँ मानव, समुद्र भी धरती की तरह ऊंचा नीचा है
0: और समुद्र की औसत गहराई लगभग 3,800 मीटर है।
4: और तुम्हें पता है बच्चों, समुद्र की इस गहराई में अनेक धात्विक खजाने दबे हुए हैं।
1: कौन से धात्विक खजाने दबे हुए हैं?
2: मानव, मम्मी का मतलब पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स या बहुधात्विक पिंडिका से है।
3: यहाँ बहुधात्विक पिंडिका के बारे में अच्छी जानकारी दी गई है।
0: लिखा है कि भारत को इस दिशा में कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण से मध्य हिंद महासागर में 150,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र मिला है। वर्ष 2002 तक भारत ने 2500 से अधिक स्थानों से 250 टन से भी अधिक बहुधात्विक पिंडिकाएं इकट्ठी की हैं, जिनसे हमें कई बहुमूल्य धातुएं प्राप्त होती हैं।
3: और आगे बढ़ो मानव, भारत के संरक्षित समुद्री क्षेत्र से प्राप्त पिंडिकाओं में तांबा, कोबाल्ट, निकल और मैंगनीज के करीबन 6.5 मिलियन टन अनुमानित भंडार जमा है।
1: दीदी, समुद्र के इस खजाने में सोना चांदी नहीं है क्या?
2: मानव, समुद्र के पानी में सोने और चांदी के अलावा ब्रोमीन, लोहा, कैल्शियम और सल्फेट जैसे अनेक तत्व घुले हैं।
1: इसका मतलब समुद्र से नमक ही नहीं, कीमती धातुएं भी मिलती हैं।
3: और समुद्र से हमें मोती भी तो मिलते हैं।
1: तब तो इस चित्र प्रदर्शनी को नाम सही दिया गया है, समुद्र का खजाना।
2: तो पापा, अभी और क्या क्या है समुद्र के खजाने में?
0: अरे बेटा, समुद्र के भंडार में हाइड्रोकार्बन स्रोत भी महत्वपूर्ण है।
3: काला सोना कहलाने वाला पेट्रोलियम भी तो समुद्र से ही निकाला जाता है।
1: लेकिन समुद्र में पेट्रोल कहाँ से आता है?
4: मानव, देखो इस चित्र में छोटे समुद्री जीवों और वनस्पतियों को सागर तल में जमा होते दिखाया गया है।
3: और फिर उच्च दाब और ताप से ये जीव हजारों वर्षों में हाइड्रोकार्बन पदार्थ में बदल जाते हैं,
2: जिनसे हमें प्राकृतिक गैस, गैसोलिन, मिट्टी का तेल, डीजल, मोम और वैसलीन और न जाने क्या क्या मिलता है।
1: अरे वाह, समुद्र से इतने सारे हाइड्रोकार्बन पदार्थ निकलते हैं।
2: मानव, समुद्र को धरती का भंडार गृह ऐसे ही थोड़ा ना कहा गया है, यहाँ तो असीम प्राकृतिक संपदा बिखरी हुई है।
0: आधी प्रदर्शनी तो देख ली बच्चों, अब क्या विचार है?
3: पापा, कुछ देर बाहर खुली हवा में घूमकर आते हैं?
1: नहीं नहीं, घूमेंगे नहीं, पार्क में बैठेंगे। पर पहले आइए, सभी का स्वागत है प्रदर्शनी के समुद्री ऊर्जा संसाधन वाले इस हिस्से में।
2: मानव, क्या पिछले जन्म में गाइड थे?
1: फिर से
0: बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ अच्छी जानकारी दी है। लिखा है भारत के पास 20 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक अनन्य आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जिसमें उपस्थित सभी संसाधनों का दोहन किया जा सकता है।
2: पापा, ज्वारीय ऊर्जा भी तो समुद्र के खजाने का एक मोती है।
0: हाँ बच्चों, विश्व के अनेक देशों में समुद्र की ज्वारीय ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न की जाती है।
1: तो क्या भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की संभावना है?
0: हाँ?
2: भारत की अनुमानित ज्वारीय ऊर्जा क्षमता करीब 8,000 से 9,000 मेगावाट है। और बच्चों, इस चित्र में तटीय क्षेत्रों में ज्वारीय ऊर्जा को दर्शाया गया है।
1: देखो, ज्वारीय ऊर्जा ज्वार भाटा से ही संबंधित है ना दीदी?
2: हाँ मानव, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से समुद्र के तटीय जल में निश्चित समय में उतार चढ़ाव होते हैं
4: और इसी को कहते हैं ज्वार भाटा। और बच्चों, यहाँ दर्शाया गया है कि कैसे ज्वार भाटा की घटना से समुद्री जल के उतार चढ़ाव से टरबाइन को घुमाकर विद्युत पैदा की जाती है।
0: देख रहे हो ना बेटा, भारत में भी सुंदरवन क्षेत्र में करीब 3.5 मेगावाट के ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की योजना बन रही है।
3: बहुत अच्छी बात है पापा। अब आगे चले, आगे देखते हैं सागर में और क्या क्या ऊर्जा स्रोत छुपे हैं।
0: अरे ये देखो बच्चों, समुद्री जलतापीय ऊर्जा, जिसे ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन भी कहा जाता है, ये देखो दिखाया।
3: मानव, इस सिलसिले में सबसे पहला विचार किसका था?
1: मेरा तो नहीं था।
3: मैं बताता हूँ, इस तरह ऊर्जा प्राप्त करने के विचार को सर्वप्रथम 1881 में एक फ्रेंच इंजीनियर ने रखा था।
4: इसमें ऊर्जा के उत्पादन का सिद्धांत समुद्री जल की विभिन्न परतों के तापमान के अंतर में छिपा है।
1: ये तो मैं भी जानता हूँ कि सूर्य की किरणों से समुद्री जल की ऊपरी परत अधिक गर्म हो जाती है।
2: हाँ मानव, समुद्री सतह के नीचे जल का ताप कम होता जाता है।
0: हाँ, और इसी सिद्धांत पर 1970 में जापान के हवाई द्वीप में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की गई।
3: लेकिन इस विधि में ऊर्जा उत्पादन के लिए समुद्री जल में न्यूनतम तापमान अंतर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल।
1: लगता है भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति के लिए समुद्र भी एक महत्वपूर्ण स्रोत होगा।
4: हाँ मानव, जीवाश्म ईंधन की समाप्ति पर ये अक्षय स्रोत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
2: अरे अभी समुद्र के ऊर्जा स्रोत खत्म नहीं हुए, आगे भी तो है। चलो चलो देखते हैं।
0: अरे वाह, देखो मानव, यहाँ देखो, यहाँ समुद्री धाराओं और तटीय क्षेत्रों में पवन ऊर्जा से भी विद्युत निर्माण की जानकारी दी गई है।
3: समुद्री जल की लवणता में भिन्नता से भी ऊर्जा उत्पादन के बारे में अब इस चित्र में बताया गया है, देखो मानव।
1: हाँ, और हमारी टीचर ने भी बताया था कि विश्व के सभी समुद्रों में लवणता की मात्रा भिन्न भिन्न होती है।
4: वाह शाबाश बेटा, तू जरूर हमारा नाम रोशन करेगा एक दिन।
2: रोशनी करेगा मम्मी, पर अंधेरे में मोमबत्ती जलाकर।
0: अरे बेटा तू बहुत तंग है।
4: लगता है हम प्रदर्शनी के आखिरी हिस्से में हैं।
0: तुमने सांस तो बहुत लंबी ली, ऐसा लगता है थक गई हो तुम वसुधा। देखो यहाँ चित्रों में गैस हाइड्रेट के बारे में बताया गया है। ये बताया गया है कि हाइड्रेट की खोज महान वैज्ञानिक हम्पी डेवी ने सन 1811 में की।
3: वैसे प्रकृति में हाइड्रेट तो अनेक रूपों में मिलते हैं, लेकिन समुद्री तलछटों में पाए जाने वाले मीथेन हाइड्रेट भविष्य में ऊर्जा के अच्छे स्रोत हो सकते हैं।
4: और यहाँ लिखा है कि समुद्र में हाइड्रेट की अनुमानित मात्रा कुल जीवाश्म ईंधन की मात्रा से दुगनी है।
2: और इनकी खोज सर्वप्रथम 1980 में की गई थी। आने वाले समय के लिए हाइड्रेट क्षेत्रों को ऊर्जा भंडार के रूप में देखा जा रहा है।
1: भैया अभी तक कितने गैस हाइड्रेट क्षेत्रों की पहचान की गई है?
3: मानव अभी तक विश्व में 77 गैस हाइड्रेट क्षेत्रों की पहचान की गई है।
0: और देखो यहाँ इस लेख में समुद्र में इन स्रोतों की खोज और सर्वेक्षण करने संबंधी प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया है। देखो
3: यहाँ वेधन या ड्रिलिंग और पनडुब्बियों की जानकारी दी गई है, जो समुद्री खजानों यानी समुद्र के संसाधनों की खोज और शोध करते हैं।
2: भैया भारत की सागर कन्या यान भी तो ऐसा ही काम कर रही है।
3: हाँ सृष्टि बिल्कुल ठीक, सागर कन्या समुद्री क्षेत्र में खोज व अन्वेषण का काम भी करती है। ये समुद्र विज्ञान से संबंधित चलती फिरती प्रयोगशाला है।
0: भाई अब तो शाम हो गई, अब घर चलें।
2: चलते हैं।
1: मम्मी आज हमने सागर के खजाने के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। मुझे तो लगता था कि समुद्र से केवल नमक ही मिलता है।
3: शुक्र है तुम्हें इतना तो पता था।
2: बाहर तो इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वहाँ कितना मजा आ रहा है।
3: और ये वर्षा भी तो समुद्र के कारण ही मिलती है।
0: हाँ बच्चों, जब सूरज की गर्मी से समुद्रों का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है तब बादल बनते हैं।
3: और ये बादल हवा के बहाव के साथ विभिन्न स्थानों पर वर्षा करते हैं।
1: और हवाएं भी कितनी तरह की होती है ना, ट्रेड विंड यानी व्यापारिक हवाएं, जेट स्ट्रीम आदि।
3: मानव जेट हवाएं वायुयानों को उड़ने में मददगार हैं, और व्यापारिक हवाएं समुद्र में पानी के जहाजों को गति करने में सहायक होती हैं।
1: भैया हवाओं के चलने से हरिकेन और टाइफून जैसे तूफान भी तो आते हैं ना।
4: मानव हवाएं केवल तूफान ही पैदा नहीं करती, इनसे बिजली भी बनाई जा सकती है।
1: बिजली और वो भी हवाओं से? ऐसा शायद मैंने कहीं पढ़ा है।
3: सच में पढ़ा है तुमने?
1: जी हाँ पढ़ा है।
3: अच्छा। मानव हाल ही के दिनों में पवन ऊर्जा महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत बनकर उभर रही है। इसमें हवा की शक्ति से टर्बाइनों को घुमाकर बिजली बनाई जाती है।
4: वैसे भी मानव बेटा वायुमंडल और समुद्र तो हमारी धरती पर जीवन की निशानी है।
3: धरती का मौसम भी तो वायुमंडल और समुद्री प्रक्रियाओं पर काफी हद तक निर्भर होता है, तो ये भी एक तरह से समुद्र की देन हुआ ना।
0: हाँ, और बच्चों आजकल कई देशों में मौसम पूर्वानुमान तेजी से उभरता हुआ व्यवसाय बन रहा है, तो ये भी एक तरह से समुद्र की ही देन है।
4: अरे अरे बच्चों, तुमने बारिश की बात की थी ना, देखो तो अब बिन मौसम ही बरसात होने लगी है।
1: बारिश
2: मानव, तू सुबह से नहाया नहीं ना, इसीलिए तुझे नहलाने के लिए बारिश हो रही है। चलो
1: लेकिन मम्मी मेरी थाली में नमक मत रखना।
2: हाँ? क्या हुआ मानव, पहले तुम थाली में चम्मच भरकर नमक रखने को कहते थे
3: और उसे वैसे ही छोड़ देते थे।
0: अरे बेटा, आज कहीं तुमने किसी से ये तो नहीं सुन लिया कि जितना नमक बर्बाद करोगे अगले जन्म में उतना ही आँखों की पलकों से उठाना पड़ेगा।
4: है? नहीं जी, मेरा बेटा ऐसी रूढ़ियों को थोड़ा ही मानता है।
0: चलो, अच्छा नहीं मानता
2: तो फिर क्या बात है, आज मानव नमक की कद्र कैसे करने लग गया?
4: जरूर इस बात का संबंध समुद्र के खजाने वाली प्रदर्शनी से है।
0: ओ, क्यों मानव, क्या यह बात सही है?
1: हाँ पापा, आज प्रदर्शनी देखकर मुझे समझ आ गया कि प्रत्येक तत्व, चाहे वो नमक हो या हीरे मोती, प्रकृति में सभी की अहमियत है। इसीलिए हमें पृथ्वी के सभी संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ही करना चाहिए, क्योंकि इनके उचित उपयोग में ही हम सबकी भलाई है।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो, हमारा मानव तो प्रकृति के संसाधनों के उचित उपयोग की बात समझ गया। अब जल्द ही सभी मानव इस बात को समझ जाएं तो पृथ्वी पर जीवन सदा मुस्कुराता रहेगा।
3: क्या बात है, क्या
1: पर
3: बात
1: पापा
3: है?
1: मैं तो तभी मुस्कुराऊंगा जब मैं खाना खाऊंगा, तो शुरू करें।
5: धरती मेरी धरती, अभी आप विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 26वीं कड़ी सुन रहे थे, समुद्र का खजाना।
6: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि हम सब जानते हैं आज 26 सितंबर है और आज के दिन दुनिया भर में मनाया जाता है विश्व गर्भ निरोधक दिवस और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य गर्भ निरोधक विकल्पों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, अनचाहे गर्भधारण को रोकना, साथ ही महिलाओं और युवाओं को अपने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है ताकि वे सोच समझकर सही निर्णय ले सकें। साथियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अकॉर्डिंग दुनिया भर में लाखों महिलाएं आज भी आधुनिक और सुरक्षित गर्भ निरोधक साधनों से वंचित हैं, जिसके कारण अनियोजित गर्भधारण के मामले बढ़ जाते हैं। तो साथियों, इस विश्व गर्भ निरोधक दिवस के अवसर पर हमने तुगलपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की MOIC डॉक्टर ऋषिका जी से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा परिवार नियोजन के बारे में, आइए जानते हैं।
3: फैमिली प्लानिंग हमारे देश में जहाँ आपकी सबसे ज्यादा आबादी है पूरे वर्ल्ड में तो बहुत ही जरूरी है और गवर्नमेंट बहुत इसके लिए मेथड्स ले रही है, लेकिन इतने सारे कैंपेन शुरू कर रखे हैं दो बच्चे ही अच्छे और इस तरह के, वो तो करती है गवर्नमेंट, पर इसके साथ साथ हमारे PHC पे एक तो कॉन्डम्स मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप कभी भी ले जा सकते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स भी मिलते हैं, लाइक निक्षे वगैरह जो मिलता है वो लेके आपको अगर टेस्ट करना हो प्रेगनेंसी का। इसके साथ साथ माला एन मिलती हैं, टैबलेट्स, कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स होती हैं और सहेली वगैरह भी मिलती हैं, प्लस इसके साथ साथ इंजेक्शन भी लगते हैं, हर 3 महीने पर लगते हैं वो अंतरा के इंजेक्शन। तो ये सब फैसिलिटीज़ भी हमारे यहाँ हैं। जो हमारे यहाँ महिला आती है पहले तो हम उनकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं कि उनके कितने बच्चे हैं घर में, कितना क्या है, और पहले सबसे पहले हम उनको स्पेस्ड प्रेगनेंसी के लिए एडवाइस करते हैं कि हर बच्चे में एटलीस्ट 3 साल का गैप होना चाहिए। हमारे यहाँ एक्चुअली यही होता है कि ज़्यादातर 1-1 साल का गैप होता है, इससे क्या होता है मदर की हेल्थ पर बहुत फर्क पड़ता है और अल्टीमेटली बच्चे की हेल्थ पर भी फर्क पड़ता है, सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं मेंटल हेल्थ पे भी उनके बहुत प्रभाव पड़ता है क्योंकि घर में बहुत छोटे बच्चे अगर 2-3 हों तो बहुत दिक्कतें होती हैं। तो उन्हें तो हम पहले ये एडवाइस करते हैं कि अगर आपने अभी बच्चा किया है तो एटलीस्ट 3 साल का गैप रखिए ताकि आपका स्वास्थ्य थोड़ा रिकवर हो सके। उसके साथ साथ अगर उनके 2 बच्चे से ज़्यादा हैं तो हम उनको यही बोलते हैं कि हमारे यहाँ उनको हम काउंसिल करते हैं कि हमारे यहाँ ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, आप प्लीज़ आइए और सबको इस सब का लाभ उठाइए। और हम उनको बताते ही हैं, मतलब आजकल के ज़माने में जहाँ पे इतनी महंगाई है और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो हम उनसे थोड़ा बात करते हैं, उनके पर्सनल लेवल पे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझाते हैं।
4: बिल्कुल डॉक्टर ऋषिका जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने आज रेडियो के माध्यम से हमारे श्रोताओं तक, खास करके जो समुदाय के लोग हैं उन तक पहुँचाई है। हमसे बात करने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: बम चिक चिक बम चिक बम बम बम चिक चिक बम।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

10 से 19 साल के बच्चे हर हफ्ते लें आयरन की सिर्फ एक नीली गोली। ये खून में आयरन की मात्रा बढ़ाए, दिमाग और शरीर एकदम सॉलिड बनाए। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध।

0: देवांश क्या करेगा? 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज 26 सितंबर है और आज के दिन दुनिया भर में मनाया जाता है विश्व गर्भ निरोधक दिवस। और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य गर्भ निरोधक विकल्पों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, अनचाहे गर्भधारण को रोकना, साथ ही महिलाओं और युवाओं को अपने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है, ताकि वे सोच समझकर सही निर्णय ले सकें। साथियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अकॉर्डिंग दुनिया भर में लाखों महिलाएं आज भी आधुनिक और सुरक्षित गर्भ निरोधक साधनों से वंचित हैं, जिसके कारण अनियोजित गर्भधारण के मामले बढ़ जाते हैं। तो साथियों, इस विश्व गर्भ निरोधक दिवस के अवसर पर हमने तुगलपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की MOIC डॉक्टर ऋषिका जी से बात की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा परिवार नियोजन के बारे में, आइए जानते हैं।
1: फैमिली प्लानिंग हमारे देश में जहाँ आपकी सबसे ज्यादा आबादी है पूरे वर्ल्ड में, तो बहुत ही जरूरी है और गवर्नमेंट बहुत इसके लिए मेथड्स ले रही है, लेकिन इतने सारे कैंपेन शुरू कर रखे हैं, दो बच्चे ही अच्छे और इस तरह के, वो तो करती है गवर्नमेंट। पर इसके साथ साथ हमारे PHC पे एक तो कॉन्डम्स मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप कभी भी ले जा सकते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स भी मिलते हैं, लाइक निक्षे वगैरह जो मिलता है लेके आपको अगर टेस्ट करना हो प्रेगनेंसी का। इसके साथ साथ माला एन मिलती हैं, टैबलेट्स, कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स होती हैं, और सहेली वगैरह भी मिलती हैं। प्लस इसके साथ साथ इंजेक्शन भी लगते हैं, हर 3 महीने पे लगते हैं वो अंतरा के इंजेक्शन। तो ये सब फैसिलिटीज भी हमारे यहाँ हैं। जो हमारे यहाँ महिला आती है, पहले तो हम उनकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं कि उनके कितने बच्चे हैं घर में, कितना क्या है, और पहले सबसे पहले हम उनको स्पेस्ड प्रेगनेंसी के लिए एडवाइस करते हैं कि हर बच्चे में एटलीस्ट 3 साल का गैप होना चाहिए। हमारे यहाँ एक्चुअली यही होता है कि ज्यादातर 1-1 साल का गैप होता है। इससे क्या होता है, मदर की हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है और अल्टीमेटली बच्चे की हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है। सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ पे भी उनके बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि घर में बहुत छोटे बच्चे अगर 2-3 हों तो बहुत दिक्कतें होती हैं। तो उन्हें तो हम पहले ये एडवाइस करते हैं कि अगर आपने अभी बच्चा किया है तो एटलीस्ट 3 साल का गैप रखिए, ताकि आपका स्वास्थ्य थोड़ा रिकवर हो सके। उसके साथ साथ अगर उनके 2 बच्चे से ज़्यादा हैं तो हम उनको यही बोलते हैं कि हमारे यहाँ उनको हम काउंसिल करते हैं कि हमारे यहाँ ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, आप प्लीज़ आइए और सबको इस सब का लाभ उठाइए। और हम उनको बताते ही हैं, मतलब आजकल के ज़माने में जहाँ पे इतनी महंगाई है और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उनसे थोड़ा बात करते हैं, उनके पर्सनल लेवल पे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझाते हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर ऋषिका जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने आज रेडियो के माध्यम से हमारे श्रोताओं तक, खास करके जो समुदाय के लोग हैं उन तक पहुँचाई है हमसे बात करने के लिए और जानकारी देने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब होटल मॉल स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: मैडम यू कैन बी वेरी फंटा।
2: केटो डाइट का नाम सुना है? आज से ये सब बंद और वो शुरू।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th

0: पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। मैंने टीवी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा, बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको। इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: महावारी एक महिला के संपूर्ण स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये एक कुदरती घटना है, फिर भी ये दुनिया भर में लाखों महिलाओं के लिए नियमित तौर पर और भयंकर रूप से उनके शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य में रुकावट बनती है।
1: महावारी एक ऐसी घटना है जिसका सामना महिलाएं और लड़कियां मानव जाति की शुरुआत से ही करती आ रही हैं। हालांकि यही मानव जाति के लगातार अस्तित्व में बने रहने का कारण भी है, फिर भी एक महिला की महावारी के साथ बहुत ज्यादा शर्म और संकोच जैसे भाव जुड़े हुए हैं।
0: महावारी को अक्सर खून, अशुद्धता और घृणा से जोड़ा जाता है, जो कि सरासर गलत बात है। इसी कारण से महिलाएं अपनी महावारी के बारे में बात करने में संकोच महसूस करती हैं।
1: इसलिए लड़कों और लड़कियों दोनों को ही महावारी और मासिक चक्र के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने की जरूरत है। महावारी से संबंधित गलत अवधारणाओं या मिथकों को दूर करने में लड़के भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
0: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि हम सब जानते हैं आज 26 सितंबर है और आज के दिन दुनिया भर में मनाया जाता है विश्व गर्भ निरोधक दिवस और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य गर्भ निरोधक विकल्पों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, अनचाहे गर्भधारण को रोकना, साथ ही महिलाओं और युवाओं को अपने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है ताकि वे सोच समझकर सही निर्णय ले सकें। साथियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अकॉर्डिंग दुनिया भर में लाखों महिलाएं आज भी आधुनिक और सुरक्षित गर्भ निरोधक साधनों से वंचित हैं, जिसके कारण अनियोजित गर्भधारण के मामले बढ़ जाते हैं। तो साथियों, इस विश्व गर्भ निरोधक दिवस के अवसर पर हमने तुगलपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की MOIC डॉक्टर ऋषिका जी से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा परिवार नियोजन के बारे में, आइए जानते हैं।
1: फैमिली प्लानिंग हमारे देश में जहाँ आपकी सबसे ज्यादा आबादी है पूरे वर्ल्ड में तो बहुत ही जरूरी है और गवर्नमेंट बहुत इसके लिए मेथड्स ले रही है, लेकिन इतने सारे कैंपेन शुरू कर रखे हैं दो बच्चे ही अच्छे और इस तरह के, वो तो करती है गवर्नमेंट, पर इसके साथ साथ हमारे PHC पे एक तो कॉन्डम्स मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप कभी भी ले जा सकते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स भी मिलते हैं, लाइक निक्षे वगैरह जो मिलता है लेके आपको अगर टेस्ट करना हो प्रेगनेंसी का। इसके साथ साथ माला एन मिलती हैं टैबलेट्स, कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स होती हैं और सहेली वगैरह भी मिलती हैं, प्लस इसके साथ साथ इंजेक्शन भी लगते हैं, हर 3 महीने पे लगते हैं वो अंतरा के इंजेक्शन। तो ये सब फैसिलिटीज़ भी हमारे यहाँ हैं। जो हमारे यहाँ महिला आती है पहले तो हम उनकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं कि उनके कितने बच्चे हैं घर में कितना क्या है, और पहले सबसे पहले हम उनको स्पेस्ड प्रेगनेंसी के लिए एडवाइस करते हैं कि हर बच्चे में एटलीस्ट 3 साल का गैप होना चाहिए। हमारे यहाँ एक्चुअली यही होता है कि ज़्यादातर 1-1 साल का गैप होता है, इससे क्या होता है मदर की हेल्थ पर बहुत फ़र्क पड़ता है और अल्टीमेटली बच्चे की हेल्थ पर भी फ़र्क पड़ता है। सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं मेंटल हेल्थ पे भी उनके बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि घर में बहुत छोटे बच्चे अगर 2-3 हों तो बहुत दिक्कतें होती हैं। तो उन्हें तो हम पहले ये एडवाइस करते हैं कि अगर आपने अभी बच्चा किया है तो एटलीस्ट 3 साल का गैप रखिए ताकि आपका स्वास्थ्य थोड़ा रिकवर हो सके। उसके साथ साथ अगर उनके 2 बच्चे से ज़्यादा हैं तो हम उनको यही बोलते हैं कि हमारे यहाँ उनको हम काउंसिल करते हैं कि हमारे यहाँ ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, आप प्लीज़ आइए और सबको इस सब का लाभ उठाइए। और हम उनको बताते ही हैं, मतलब आजकल के ज़माने में जहाँ पे इतनी महंगाई है और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो हम उनसे थोड़ा बात करते हैं, उनके पर्सनल लेवल पे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझाते हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर ऋषिका जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने आज रेडियो के माध्यम से हमारे श्रोताओं तक, खास करके जो समुदाय के लोग हैं उन तक पहुँचाई है हमसे बात करने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। एचआईवी और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक एचआईवी रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग एचआईवी को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर एचआईवी रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं कि हर एचआईवी मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी एचआईवी की जांच कराएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया? नमस्ते आशा दीदी, सब ठीक बा? साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
2: जी दीदी,
1: जैसे रहुआ कहल रहनी हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम, जहाँ कहीं भी पानी जमा देखी नी ओकेरा के तुरंत साफ करी नी, जैसे कि पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे सब के साफ सफाई करी ले हम,
3: और आस पास कहूँ भी टायर नरी

0: बस अब ली हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी, मिलके पड़क जा मच्छर बन पर भारी।
1: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हो। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकलकर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन बी की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देते हैं। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉन वेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन।

0: एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि हम सब जानते हैं आज 26 सितंबर है और आज के दिन दुनिया भर में मनाया जाता है विश्व गर्भ निरोधक दिवस और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य गर्भ निरोधक विकल्पों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, अनचाहे गर्भधारण को रोकना, साथ ही महिलाओं और युवाओं को अपने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है ताकि वे सोच समझकर सही निर्णय ले सकें। साथियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अकॉर्डिंग दुनिया भर में लाखों महिलाएं आज भी आधुनिक और सुरक्षित गर्भ निरोधक साधनों से वंचित हैं, जिसके कारण अनियोजित गर्भधारण के मामले बढ़ जाते हैं। तो साथियों, इस विश्व गर्भ निरोधक दिवस के अवसर पर हमने तुगलपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की MOIC डॉक्टर ऋषिका जी से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा परिवार नियोजन के बारे में, आइए जानते हैं।
1: फैमिली प्लानिंग हमारे देश में जहाँ आपकी सबसे ज्यादा आबादी है पूरे वर्ल्ड में, तो बहुत ही जरूरी है और गवर्नमेंट बहुत इसके लिए मेथड्स ले रही है, लाइक इतने सारे कैंपेन शुरू कर रखे हैं, दो बच्चे ही अच्छे और इस तरह के, वो तो करती है गवर्नमेंट। पर इसके साथ साथ हमारे PHC पे एक तो कॉन्डम्स मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप कभी भी ले जा सकते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स भी मिलते हैं, लाइक निक्षे वगैरह जो मिलता है लेके आपको अगर टेस्ट करना हो प्रेगनेंसी का। इसके साथ साथ माला एन मिलती हैं, टैबलेट्स, कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स होती हैं और सहेली वगैरह भी मिलती हैं। प्लस इसके साथ साथ इंजेक्शन भी लगते हैं, हर 3 महीने पे लगते हैं वो अंतरा के इंजेक्शंस। तो ये सब फैसिलिटीज़ भी हमारे यहाँ हैं। जो हमारे यहाँ महिला आती है, पहले तो हम उनकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं कि उनके कितने बच्चे हैं घर में, कितना क्या है, और पहले सबसे पहले हम उनको स्पेस्ड प्रेगनेंसी के लिए एडवाइस करते हैं कि हर बच्चे में एटलीस्ट 3 साल का गैप होना चाहिए। हमारे यहाँ एक्चुअली यही होता है कि ज़्यादातर 1-1 साल का गैप होता है। इससे क्या होता है, मदर की हेल्थ पर बहुत फ़र्क पड़ता है और अल्टीमेटली बच्चे की हेल्थ पर भी फ़र्क पड़ता है। सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ पे भी उनके बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि घर में बहुत छोटे बच्चे अगर 2-3 हों तो बहुत दिक्कतें होती हैं। तो उन्हें तो हम पहले ये एडवाइस करते हैं कि अगर आपने अभी बच्चा किया है तो एटलीस्ट 3 साल का गैप रखिए ताकि आपका स्वास्थ्य थोड़ा रिकवर हो सके। उसके साथ साथ अगर उनके 2 बच्चे से ज़्यादा हैं तो हम उनको यही बोलते हैं कि हमारे यहाँ उनको हम काउंसिल करते हैं कि हमारे यहाँ ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, आप प्लीज़ आइए और सबको इस सब का लाभ उठाइए। और हम उनको बताते ही हैं, मतलब आजकल के ज़माने में जहाँ पे इतनी महंगाई और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उनसे थोड़ा बात करते हैं, उनके पर्सनल लेवल पे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझाते हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर ऋषिका जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने आज रेडियो के माध्यम से हमारे श्रोताओं तक, खास करके जो समुदाय के लोग हैं उन तक पहुँचाई है। हमसे बात करने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University.
6: Hi, I'm Ranvijay. You are listening to Suno Sharda at 90.8 FM.

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो, आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या

0: हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
0: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
0: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University. Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
5: शारदा। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
6: बिल्कुल सोचा है पापा।
5: क्या सोचा है?
6: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन VFX गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
5: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
6: जी पापा।
5: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
6: हाँ पापा बिल्कुल।
7: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
8: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, किसे दिखाऊं, पता नहीं कितना पैसा खर्च हुई है।
1: अरे मैं तो कहूँ हूँ कि तुम इसे लेकर बाबा जी के पास जाओ, बच्चों को अक्सर नजर लग जाती है। अरे नजर झड़वाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा।
2: अभी कहीं ले जाने में जाने की जरूरत नहीं है, जाके मेडिकल स्टोर से दवा ले लो या गांव के बंगाली डॉक्टर को दिखा लो, दोनों ही बहुत जानकार हैं। बड़े अस्पताल में बस बड़ा पैसा खर्च होता है और कुछ नहीं।
3: चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम बच्चे को जिला में स्थित बीमार नवजात शिशुओं के लिए अलग से बने अस्पताल जिसको कि SNCO बोलते हैं, वहाँ लेके चल सकते हैं। वहाँ के डॉक्टर साहब और नर्स बहन जी बीमार नवजात शिशुओं की देखभाल में विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं। शहर के बड़े अस्पतालों जैसी सब मशीनें इस अस्पताल में हैं। अगर बच्चे की कोई जांच करानी हो तो अस्पताल द्वारा खुद ही करा ली जाती है। नवजात को लेकर इधर उधर भागना नहीं पड़ता है और इन जांचों और दवाइयों पर परिवार को कोई भी खर्च भी नहीं करना पड़ता। इसके साथ बीमार शिशुओं को घर से अस्पताल और अस्पताल से घर वापस छोड़ने के लिए सरकार ने निशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा दी हुई है। तो सोचिए कि सरकार ने अगर इतनी व्यवस्था की है तो हम क्यों अपने नन्हे मुन्ने की जान को जोखिम में डालें और क्यों फालतू पैसा खर्च करें।
0: मैंने सोच लिया है, अब अपने बच्चे को 102 एम्बुलेंस में ले जाकर SNCO में ही दिखाऊंगा।
3: तो आपको क्या समझ में आया, फर्क पड़ता है अगर आप अपने बीमार नन्हे मुन्ने को झाड़ फूंक, मेडिकल स्टोर, झोला छाप डॉक्टर या फिर महंगे प्राइवेट डॉक्टर की बजाय जिला अस्पताल में स्थित SNCO में दिखाते हैं, क्योंकि फर्क पड़ता है।
4: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: अरे भैया रामू।
2: हाँ भैया श्यामू।
1: बड़े ढीले ढीले लग रहे हो, क्या हाल?
2: अरे भैया श्यामू, हाल बेहाल है और ये पथरी का दर्द है, निकलवानी है और जेब भी खाली है।
1: बस इतनी सी बात? चल ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल मेरे साथ, जहाँ छोटी मोटी सर्जरी सिर्फ 2,500 और बड़ी सर्जरी सिर्फ 6,000 रुपए में हो रही है।
2: अच्छा तो भैया लेके चल, अभी चल।
1: तो अभी चलो।
3: अगर आप भी हैं ग्रामीण और गरीब तबके से, तो ग्रेटर नोएडा का शारदा अस्पताल दे रहा है अच्छे इलाज का वादा। छोटे ऑपरेशन के 2,500 और बड़े ऑपरेशन के मात्र 6,000 रुपए। मरीज को बस देना होगा इम्प्लांट और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान का खर्च। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
4: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि हम सब जानते हैं आज 26 सितंबर है और आज के दिन दुनिया भर में मनाया जाता है विश्व गर्भ निरोधक दिवस और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य गर्भ निरोधक विकल्पों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, अनचाहे गर्भधारण को रोकना, साथ ही महिलाओं और युवाओं को अपने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है ताकि वे सोच समझकर सही निर्णय ले सकें। साथियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अकॉर्डिंग दुनिया भर में लाखों महिलाएं आज भी आधुनिक और सुरक्षित गर्भ निरोधक साधनों से वंचित हैं, जिसके कारण अनियोजित गर्भधारण के मामले बढ़ जाते हैं। तो साथियों, इस विश्व गर्भ निरोधक दिवस के अवसर पर हमने तुगलपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की MOIC डॉक्टर ऋषिका जी से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा परिवार नियोजन के बारे में, आइए जानते हैं।
1: फैमिली प्लानिंग हमारे देश में जहाँ आपकी सबसे ज्यादा आबादी है पूरे वर्ल्ड में तो बहुत ही जरूरी है और गवर्नमेंट बहुत इसके लिए मेथड्स ले रही है, लेकिन इतने सारे कैंपेन शुरू कर रखे हैं दो बच्चे ही अच्छे और इस तरह के, वो तो करती है गवर्नमेंट। पर इसके साथ साथ हमारे PHC पे एक तो कॉन्डम्स मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप कभी भी ले जा सकते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स भी मिलते हैं, लाइक निक्षे वगैरह जो मिलता है लेके आपको अगर टेस्ट करना हो प्रेगनेंसी का। इसके साथ साथ माला एन मिलती हैं टैबलेट्स, कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स होती हैं और सहेली वगैरह भी मिलती हैं। प्लस इसके साथ साथ इंजेक्शन भी लगते हैं, हर 3 महीने पे लगते हैं वो अंतरा के इंजेक्शंस। तो ये सब फैसिलिटीज भी हमारे यहाँ हैं। जो हमारे यहाँ महिला आती है पहले तो हम उनकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं कि उनके कितने बच्चे हैं घर में, कितना क्या है, और पहले सबसे पहले हम उनको स्पेस्ड प्रेगनेंसी के लिए एडवाइस करते हैं कि हर बच्चे में एटलीस्ट 3 साल का गैप होना चाहिए। हमारे यहाँ एक्चुअली यही होता है कि ज्यादातर 1-1 साल का गैप होता है। इससे क्या होता है, मदर की हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है और अल्टीमेटली बच्चे की हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है। सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ पे भी उनके बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि घर में बहुत छोटे बच्चे अगर 2-3 हों तो बहुत दिक्कतें होती हैं। तो उन्हें तो हम पहले ये एडवाइस करते हैं कि अगर आपने अभी बच्चा किया है तो एटलीस्ट 3 साल का गैप रखिए ताकि आपका स्वास्थ्य थोड़ा रिकवर हो सके। उसके साथ साथ अगर उनके 2 बच्चे से ज़्यादा हैं तो हम उनको यही बोलते हैं कि हमारे यहाँ उनको हम काउंसिल करते हैं कि हमारे यहाँ ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, आप प्लीज़ आइए और सबको इस सब का लाभ उठाइए। और हम उनको बताते ही हैं, मतलब आजकल के ज़माने में जहाँ पे इतनी महंगाई है और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो हम उनसे थोड़ा बात करते हैं, उनके पर्सनल लेवल पे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझाते हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर ऋषिका जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने आज रेडियो के माध्यम से हमारे श्रोताओं तक, खास करके जो समुदाय के लोग हैं उन तक पहुँचाई है हमसे बात करने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: ओले ओले ओले, शोनक। हेलो, कौन?
2: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर। आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
3: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
2: जल्द मिलते हैं।
1: हेलो हेलो हेलो,
4: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
5: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हो जाने पर 6 से 8 महीने का उपचार करवाना होता है, लेकिन अगर इलाज बीच में रोक दिया तो टीबी बिगड़ सकता है और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बन सकता है। DRTB तब होता है जब टीबी की कुछ दवा असर करना बंद कर दे। DRTB का इलाज कठिन और लंबा है, लेकिन मुमकिन है। आधुनिक जाँच और इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त उपलब्ध है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाए।
3: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-66-66 पर संपर्क करें।
4: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: सुनो शारदा
6: 94.5। भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
7: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
6: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
7: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
5: सुनो

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
2: नाम तो सुना ही होगा।
3: राम राम दोस्त राम, सत श्री अकाल। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये आवाज आपने सुनी ही होगी। मेरा नाम है गगन। सुबह से लेकर शाम तक मैं रहता हूँ आपके साथ, लेकिन एक ऐसी शख्सियत से आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जिसका नाम अक्सर आपने सुना है, जिसकी आवाज से आपका दिन बन जाता है, या यूं कहें कि रातें बन जाती हैं। सो लिसनर्स हमारे साथ जुड़ रही हैं आरजे साइमा, रेडियो मिर्ची की बड़ी फेमस आरजे, पुरानी जींस लेकर आती हैं और रेडियो शो में पुरानी हिंदी फिल्मों के गानों के साथ साथ दिलचस्प किस्से और शारियां सुनाती हैं। जब इनसे मुलाकात हो तो मौके पर चौका मारना चाहिए, और ऐसे मौके पर चौका मारा हमारी सहयोगी खुशबू ने। उनसे बात की एआई के विषय में। आइए, क्या बात हुई, सुनते हैं आरजे साइमा को खुशबू के साथ।
4: आज हमारे साथ खूबसूरत आवाज के साथ साथ एक ओपिनियन रखने वाली आरजे मौजूद है, आरजे साइमा, जिन्हें किसी पहचान की तो जरूरत नहीं है, लेकिन एआई के दौर में रेडियो किस तरह से बदल रहा है आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बदल रहा है रेडियो एआई के बाद, कह रहे खत्म हो जाएगा, जॉब चली जाएगी, बहुत सारी सवाल हैं, आप इसे कैसे देखती हैं?
5: मैं इसे देखती हूँ कि रेडियो बदल रहा है, हर दिन बदलता है, हर वक्त बदलता है, हर मोमेंट बदलता है, तो रेडियो भी बदलेगा, और उसके बदलने में कोई बुराई नहीं है, गम बेहतरी की तरफ बढ़े। इसका जो एक प्रॉमिस है, उसका जो एक वादा है, वो उससे कॉम्प्रोमाइज ना करे और उसमें हर वो नई चीज लाए जिससे जो सुनने वाला है वो मुतासर हो, वो उससे कनेक्ट करे। एआई एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारे रेडियो एक्सपीरियंस को बेहतर कैसे करेगा, और मुझे यकीन है कि ये बेहतर करने के लिए ही आया है।
4: मैम, दौर बदला है, वक्त बदला है, हम बदलने के लिए और अडॉप्शन की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी आवाज को अगर कोई बदल कर कुछ और पेश कर दे तो ये कितना खौफनाक है और इसे कैसे देखते हैं?
5: हाँ, ये बहुत खौफनाक है, और ये एआई का एक फ्लिप साइड है जहाँ पे हमें एथिकल लॉज की जरूरत है, हमें रेगुलेशन की जरूरत है, हमें बहुत सारे कानून की जरूरत है ताकि इसी का दुरुपयोग ना किया जा सके। कोई भी टेक्नोलॉजी दोनों चीज लेकर आती है, वो आपके लिए फायदेमंद भी होती है, वो आपके लिए नुकसानदेह भी बन सकती है। मेरी आवाज को इस्तेमाल करके कोई अगर नफरत की कोई बात कहे तो मुझे खुशी सिर्फ एक बात की होगी कि जो लोग मेरे बारे में जानते हैं उनको पता है कि ऐसी बात मैं कभी कर नहीं सकती और मैं यहाँ हूँ उस बात को झुटलाने के लिए। लेकिन ये कानून आना बहुत जरूरी है कि कोई भी मुझसे बिना पूछे मेरी आवाज नहीं बन सकता और नहीं इस्तेमाल कर सकता।
4: आज के दौर को आप उस आवाज में क्या कहना चाहेंगी जहां पर एक स्टूडेंट आपको सुनता है, आपको एज अ इंस्पिरेशन देखता है, और रेडियो को, क्योंकि डिजिटल दौर में रेडियो को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी लाइन ब्लर हो रही है, तो मैं चाहूंगी कि आप उन स्टूडेंट से कुछ कहें जिनसे वो ब्लर लाइन के बीच अच्छे से कनेक्ट कर सके।
5: एक इंसान को, यू नो, व्हाट डू वी लव, जिंदगी के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है कि जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि अगले पल क्या होगा, एंड इससे हम इंटरेस्टेड रहते हैं, दिलचस्पी बनी रहती है। जो रेडियो मीडियम है ना, वो हमें बहुत आजाद करता है, एक तो वो दुनिया बनाने में जो हम बनाना चाहते हैं, उस चीज को देखने में और किस तरह से हमें देखना है, ये हमारे अंदर, ये हमारा राइट होता है। मैंने एक बात कही, अगर मैं सामने नहीं हूं तो आपने मेरे एक्सप्रेशंस तो नहीं देखे, लेकिन वो बात अब आप कैसे इमेजिन कर रहे हैं वो आपकी हो गई। तो रेडियो देने वाला मीडियम है, मैंने आपसे कोई बात अगर कही तो वो बात अब आपकी है, आप उसको कैसे सोचते हैं वो लिबर्टी आपके पास है जो कि और मीडिया के पास नहीं है, वहां पे जो दिखता है वही है, आप बदल नहीं सकते।
4: बिल्कुल मैम, एक आखिरी सवाल आपसे है, एज अ रिसर्चर, कम्युनिटी रेडियो के अपने चैलेंजेस हैं, एज अ आरजे कैसे देखते हैं आप, क्योंकि बड़े चेहरे, बड़े नाम, कहानियां बदल जाती है, लेकिन कम्युनिटी, छोटा सा प्रदेश, उसकी चुनौतियां और उसकी सस्टेनेबिलिटी बदल जाती है, तो क्या कहेंगे इस पे?
5: मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो रेडियो का असल फॉर्म ले, बिकॉज रेडियो इम्पैक्ट का मीडियम होना चाहिए और कम्युनिटी रेडियो के पास वो आजादी है कि वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। और आज के दौर में हमें छोटे छोटे हिस्सों में अपनी आवाज को एक बेहतर अंजाम के लिए इस्तेमाल करना है। सो कम्युनिटी रेडियो आज जितना रेलिवेंट और आज जितना जरूरी है उतना कभी भी नहीं था।
3: भाई बिल्कुल सही कहा आरजे साइमा ने कि जिस तरीके से सामुदायिक रेडियो स्टेशन आज रेलिवेंट है इतना पहले कभी नहीं था। सामुदायिक रेडियो स्टेशन आपकी आवाज है, जन जन की आवाज है और जन जन की आवाज को लाखों करोड़ों लोगों तक हम पहुंचा रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, ऐप के माध्यम से। इसीलिए कहूंगा कि सुरु शारदा 90.8 FM के साथ अगर आप जुड़

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत